मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57:30 हुए हैं। आज है शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि। तदनुसार 14 सितंबर 2026। लीजिए आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ है आप सभी को आयुष तोमर का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में

0: 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना की शुरुआत हम कर रहे हैं समूह स्वर में इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्रम में लीजिए अब सुनिए शंकर महादेवन की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे रतन मोहन शर्मा की आवाज़ में ये भजन। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे ये भजन, भजन था रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम वंदना का समापन हम कर रहे हैं गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की आवाज़ में इस भजन के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 होने को हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत लीजिए सुनिए हिंदी दिवस विशेष पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। वाचन स्वर राजेंद्र कुमार का है।
1: देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। और सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का ये गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकिचाती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कार्यों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं है। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। ये भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे ये समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी डरना नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्प्रिय भाव से हिंदी की श्री वृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है, यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता ही न होती। पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए, तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं जिनके पढ़ने के लिए अहिंदी भाषा

0: व्यक्तियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की 2-3 भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में वही स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं जो किसी भी भाषा को प्राप्त है, और हिंदी भाषी उस उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति के लिए लग जाएं और हिंदी में विभिन्न भाषाओं पर मौलिक ग्रंथ लिखने लग जाएं, तो केवल भारतवर्ष के ही हिंदी अहिंदी भाषी नहीं, समस्त संसार के अहिंदी भाषी हिंदी सीखनी आवश्यक समझेंगे। पर यदि हिंदी में इस प्रकार के साहित्य का निर्माण नहीं हुआ तो विदेशों की कौन कहे। इस देश में भी सब लोगों की दृष्टि में हिंदी को वो ऊंचा स्थान नहीं मिल सकेगा, चाहे संविधान के कारण सार्वदेशिक कामों में उसका उपयोग होने भी लग जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ऊंचे आदर्श को सामने रखकर हिंदी भाषी हिंदी का भंडार भरपूर करने में लग जाएं और हिंदी में तेजी के साथ उच्च कोटि की जितनी पुस्तकें लिखी जाएं, उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा और सर्वमान्यता बढ़ती जाएगी। चार मिनट।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आपने सुना हिंदी दिवस विशेष विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। वाचन स्वर राजेंद्र कुमार का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज की यह संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए सामयिक चर्चा जिसका विषय है फल पौधों की कटाई एवं छटाई। उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं NS बनाफर।
1: किसान भाइयों, जैसे आप बाग बगीचा लगाते हैं या शोभाकारी पौधे लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई डगाल आड़ा टेढ़ा हो गया, कहीं आपको लगता है कि पौधों की जो शाखाएं हैं वो ज़्यादा घना हो गया या पौधों के जो आकार है वो थोड़ा भिड़ंगा हो गया। तो जहाँ तक हम एक प्रकार से कहें, जहाँ हमने शोभाकारी पौधे लगाए हैं उनके सुंदरता बनाए रखने के लिए उसमें कटाई छटाई करके उसके आकार उसके प्रकार को एक सुंदर रूप दिखाने के लिए आवश्यक है। जहाँ तक ये बात हम फल पौधों में करेंगे, कुछ हम ये बात कहें कि फल पौधों में जो कटाई और छटाई की आवश्यकता उसके प्रकाश संश्लेषण जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि उसमें सूर्य की प्रकाश अच्छे तरीके से शाखाओं पे आए, उसी प्रकार यदि शाखाओं में कोई कीड़े लग गए हैं तो शाखाओं को उस पेड़ के भाग से अलग करना या उस फल पौधे के आकार में ज़्यादा बढ़वार को रोक कर उसमें यदि हम शाखाओं को कम कर देंगे तो उसके फल के आकार और साथ ही साथ उसके गुणवत्ता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसान भाइयों को फल पौधों में या जो शोभाकारी पौधों हैं उसमें कटाई और छटाई बहुत आवश्यक होता है। उसमें हम कटाई और छटाई करेंगे तो पौधे अच्छे स्वस्थ रहेंगे, सुंदर दिखेंगे और बड़े ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे। कटाई छटाई करने का एक सिद्धांत होता है। सिद्धांत यह होता है कि जो शाखा एक दूसरे शाखा से रगड़ खा रहा है या वह शाखा जो पौधों को सही सूर्य के प्रकाश आने में दिक्कत दे रहा है वह उस पौधे के सुसुप्ता अवस्था के अवस्था में उस शाखा का कटाई करना चाहिए और छटाई जो छोटे छोटे शाखाएं हैं उनको अलग करेंगे तो उससे फायदा होगा। पौधे से फल पूरे टूट जाते हैं और पौधों में फूल भी नहीं लगा है, फूल आने का समय भी नहीं है, उस समय उनके शाखाओं को कटाई छटाई करें। और उसी प्रकार जैसे आपने कटाई छटाई किया और पौधों में आपने पूर्णतः पानी को रोक दिया, आपने पौधों में खाद देना बंद कर दिया, उसको एक सुसुप्त अवस्था में रहने दें। उसमें क्या होगा कि पौधों का जो आकार है प्रकार है कटाई छटाई के बाद में सुसुप्त अवस्था में बना रहेगा और जैसे ही उसमें हम खाद पानी और उर्वरक देंगे तो पौधे का आकार प्रकार के साथ साथ फूल भी ज़्यादा आएगा और उसमें फल भी अच्छे गुणवत्ता के आएंगे। किसान भाई साधारणतः क्या करते हैं, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कुल्हाड़ी से ही कटाई कर देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी फल पौधों का या शोभाकारी पौधों का कटाई या छटाई कुल्हाड़ी से ना करें। ज़्यादा अच्छा होगा जो आरी होता है आरी से कटाई करें या जो एक सिकेटियर बोलते हैं कैंची आता है जिससे पौधों की शाखाओं को काटकर उसको सही रूप और सही दिशा दिया जाता है उससे कटाई छटाई करें। जिस भाग को आपने कटाई छटाई किया है उस भाग में कोई भी फफूंदनाशक दवा चाहे वो बोर्डेक्स पेस्ट बना के आपने रखा हो या बोर्डेक्स मिक्सचर बना के रखा हो या डाइथेन 45 का घोल रखा हो उस कटे हुए बाग में ज़रूर से लगाएं। सामान्यतः किसान भाई कटाई छटाई करने के बाद में यदि इस प्रकार के फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसी अवस्था में वह पेड़ जहाँ पर कटाई किया है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बीमारियों का प्रवेश होता है और हो सकता है आपने जहाँ से कटाई किया है उसके नीचे से वो सड़ने लग जाए या बीमारी लगने लग जाए। किसान भाइयों, इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है हमने कटाई छटाई करने के बाद ये भी देखें कि यदि उस शाखा पर कहीं कीड़े ने छेद कर दिया है या कीड़े ने उसमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की अवस्था में तक ले गया है, ऐसी अवस्था में आप उस कीड़े लगे हुए जगह पर अगर आप मुख्य तना पे है तो उसमें आप केरोसिन या मिट्टी का तेल वाला फोहे लगाकर उसके जो छेद है जिसमें कीड़ा घुसा हुआ है उसके अंदर डाल के उसको गीली मिट्टी से ढक के रख दें तो उसमें क्या होगा आपके कटाई छटाई का सही फायदा उस पेड़ को मिलेगा। क्योंकि जो पौधे को नुकसान उस कीड़े ने किया है उस कीड़े के नुकसान आपके ट्रेनिंग पुनिंग करने के बाद में जो फलवार होने वाला है जो पौधों में ज़्यादा ज़्यादा फूल और फल लगने वाला है उसके लिए फायदा होगा। तो ये जो खास छोटी छोटी बातें हैं मगर महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अगर किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो ये मान के चलें कि उनकी कटाई छटाई के साथ में सही ज़्यादा मात्रा में फूल आएगा, फूल आने के साथ साथ अच्छे किस्म के फल लगेंगे और उसमें लगने वाले फल जो है उसका गुणवत्ता काफ़ी अच्छा रहेगा।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत आपने सुनी ये सामयिक चर्चा, जिसका विषय था फल पौधों की कटाई एवं छटाई, और उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे NS बनाफर। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 और 48 सेकंड हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
2: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
6: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रगटित दृष्टये आगामी सह काराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सह सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणमयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे प्रधानमंत्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेष बलं दत्तमस्ति, यतो हि वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर संबद्धस्य विश्वस्य कोऽपि संकटः केवलं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेश मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनेन बहवः मूर्त विकासोन्मुख परिणामाः संजाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयता विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एताम् उपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमंत्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्त मन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीयवैश्विकघटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदानप्रदानाय महत्त्वपूर्णः

0: अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26-अधिक-2000तमस्य हिन्दीदिवसस्य अथ च 6थस्य अखिलभारतीयराजभाषासम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयिष्यति। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढ़े, पंजाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलङ्कादलं 270 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का नई दिल्ली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों का दर्शाने वाला वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहे। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6थे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि

0: चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिन तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। और क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आप सभी के लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम काव्य पाठ। प्रस्तुति होगी राजहंस सेठ की। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 7:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार होंगे अक्षदा वाकड़कर और इनके द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी गजलें। प्रातः 9:00 आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। प्रातः 9:30 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे कमल कामले और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वॉयलिन वादन पर राग गुर्जरी तोड़ी। प्रातः 10:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा।

प्रातः 11 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर 12 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। दोपहर 1 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। दोपहर 1:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। दोपहर 1:45 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। 2:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

साया 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति भोपाल जिले की होगी। साया 5:33 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। साया 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग प्रस्तुति आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगी। साया 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। साया 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तुतिकर्ता होंगी स्वाति शर्मा। चर्चा के विषय होंगे

0: दिवस, गणेश चतुर्थी और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। रात 8:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। रात 10:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से पुनः प्रसारण किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। रात 10:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम राग रजनी। इसी के साथ हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं, समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कल समापन हुआ। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का एक इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा विजन और भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से योजनाओं और फैसले को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की अपील की। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी।
1: मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस मौके पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग ने कल देर रात इनके आदेश जारी किए जिसमें डीएसपी, एसडीओपी, सीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से मैदानी पदों पर भेजा गया है जबकि कई अफसरों की दूसरे जिलों में नई जिम्मेदारी तय की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन भी शामिल होंगे। श्री शाह ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं।
2: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये 1 माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र की हर प्रशासनिक इकाई, हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक पहुंचने वाले हैं।

0: वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। शाम 7 बजे होने वाले आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा गया है। इनमें दीप जलाने के लिए करीब 25,000 वॉलेंटियर्स तैनात किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से हर सब सेक्टर में दीप, तेल, कपूर, माचिस और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन को जीरो वेस्ट रखने के लिए सफाई और कचरा प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है और राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गणेश चतुर्थी और तीज के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के साथ शिवपुरी जिले में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। जिले के कोलारस जनपद के ग्राम खरे की किंता शाक्य इसकी जीवंत मिसाल है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
2: किंता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राम जानकी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह से उन्हें पहला 10,000 रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने छोटी सी किराना दुकान शुरू की। समय पर लोन चुकाने से उनकी साख बढ़ी। दूसरा लोन 30,000 रुपए का मिला, जिससे उन्होंने फेरी लगाने के लिए एक गाड़ी खरीदी। पति गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे, जिससे आय कई गुना बढ़ गई।
3: मेरा नाम किंता शाक्य है, मैं कराई से हूँ। मैं जब समूह में नहीं जुड़ी थी, तब मैं हमारे घर के कुछ ऐसे ही हालात थे, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम पे 5 बीघा जमीन है, पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा कुछ तरह नहीं होता था। फिर समूह बनने थे गांव में, हमने आजीविका मिशन समूह बनाया, उसमें हम जुड़े थे। हम आजीविका मिशन का, हमारे मंत्री जी का हम धन्यवाद दिल से करते हैं।
2: एक समय संसाधनों के अभाव से जूझने वाली किंता साक आज न केवल अपने पूरे परिवार को एक सशक्त और समृद्ध आर्थिक आधार दे चुकी हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। शिवपुरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रंजीत गुप्ता।
0: सागर जिले के बंडा के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शिवांजय राजपूत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कठुआ नाला जंगल के रास्ते अपने गांव छापरी जाने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि शिवांजय ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड गोली चलाई और 1 गोली उसके पैर में लगी। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ शराब तस्करी के 3 मामले पहले से दर्ज है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा,
4: सागर के अंदर हमारी पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ये एक आपराधिक का शार्ट एनकाउंटर हुआ है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लाइन ऑर्डर को लेकर के हम बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। होने वाली घटना पर हमारी कठोरता जारी रहेगी।
0: प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में पिछले 1.5 साल में रोजाना दूध का संकलन 8,73,000 किलो से बढ़कर जुलाई 2026 में करीब 12,00,000 किलो हो गया है। प्रदेश में 26,000 दुग्ध सहकारी समितियां बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मोखेड़ में स्थित कुकड़ी खापा जलप्रपात में कल नागपुर के 4 युवक अचानक बड़े पानी के बीच फंस गए। करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरते पानी के नीचे चट्टान पर बैठे युवक करीब 1.5 घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और करीब 150 फीट गहराई में उतरकर रस्सियों की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की पुस्तक डॉक्टर मोहन भागवत संदेश का विमोचन विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में किया गया। पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के राष्ट्र चिंतन, भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों को संकलित किया गया है। लेखक कृष्ण मोहन झा ने बताया कि अलग अलग विषयों पर डॉक्टर भागवत के विचारों को एक जगह प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों खैदम शिलिमा चानू और कृष्णा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चीन में हुए महिला जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। शिलिमा चानू ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली, जबकि कृष्णा शर्मा ने जापान और पाकिस्तान के खिलाफ गोल कर जीत में अहम योगदान दिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में एक साथ 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहे, जिससे कई जिलों में तेज बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले तालाब उफान पर है, जबकि इंदौर, मुरैना, रतलाम समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए जिले में 6 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा और नर्मदापुरम में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। ग्वालियर में तिगरा जलाशय में क्षमता से ज्यादा पानी आने पर कल शाम 3 गेट खोलकर सांक नदी में पानी छोड़ा गया। डिंडोरी में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर मंत्री संपत्तियां उइके ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने कान्हा से लगे भानपुर खेड़ा में स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया और बैगा ग्रामीणों से संवाद किया। कटनी में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 160 बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीहोर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय, आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:21 और 38 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम काव्यपाठ। प्रस्तुति राजहंस सेठ की है।
2: मेरी पहली कविता है प्रेम में। मैंने प्रेम में उसे चांद कहा, उसके चेहरे पर चांदनी बिखर गई। मैंने प्रेम में उसे हिरणी कहा, उसमें उमंगें कुलाचें भरने लगीं। मैंने प्रेम में उसे चांद कहा, उसके चेहरे पर चांदनी बिखर गई। मैंने प्रेम में उसे हिरणी कहा, उसमें उमंगें कुलाचें भरने लगीं। मैंने प्रेम में उसे हर श्रृंगार कहा, वह झरती रही भीतर ही भीतर। मैंने प्रेम में उसे हर श्रृंगार कहा, वह झरती रही भीतर ही भीतर। मैंने उसे नदिया की धार कहा, एक पूरी सदी उसमें नदी की तरह बहने लगी। मैंने उसे नदिया की धार कहा, एक पूरी सदी उसमें नदी की तरह बहने लगी। मैंने प्रेम में उसे आकाश कहा और महसूस किया उसका नीलापन अपने विस्तार में। मैंने प्रेम में उसे आकाश कहा और महसूस किया उसका नीलापन अपने विस्तार में। मैं बहुत कुछ कहता रहा उसे प्रेमालाप में। मैं बहुत कुछ कहता रहा उसे प्रेमालाप में। बांधता रहा जमीन आसमान के कुलाबे, वह बस एक टक निहारती रही मुझे। वह बस एक टक निहारती रही मुझे, फिर उठी यक वह यक, लिया मुझे आलिंगन में। देते हुए चुम्बन बोली मुस्कुरा कर, लो अब पूरा ब्रह्मांड हो गया तुम्हारा। फिर उठी यक वह यक, लिया मुझे आलिंगन में। देते हुए चुम्बन बोली मुस्कुरा कर, लो पूरा ब्रह्मांड हो गया तुम्हारा। दूसरी कविता छोटी सी कविता है गुनाह। हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे। हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे। जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं हैं। जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं हैं। हम गुनाहों की माफ़ी के लिए ईश्वर के पास गए, राजा के सामने झुके, हुक्मरानों से गुहार की। हम गुनाहों की माफ़ी के लिए ईश्वर के पास गए, राजा के सामने झुके, हुक्मरानों से गुहार की। हम कभी उनके पास नहीं गए जिनके गुनाहगार हम थे। तीसरी कविता है कहाँ रह जाएगी पृथ्वी। लड़की के शरीर में जल है, प्रभु इसे ज्वार दो। लड़की के शरीर में जल है, प्रभु इसे ज्वार दो। आंसू बनकर ही न रहे कभी बहे भी तटबंधों को तोड़कर। लड़की के शरीर में अग्नि है, प्रभु इसे ताप दो। जलती रहे न रहे वह स्वयं ही कभी जलाए अपने दुख भी। लड़की के शरीर में अग्नि है, प्रभु इसे ताप दो। जलती न रहे वह स्वयं ही कभी जलाए अपने दुख भी। लड़की के शरीर में वायु है, प्रभु इसे बेग दो। लड़की के शरीर में वायु है, प्रभु इसे बेग दो। उड़ सके वह स्वच्छंद भीतर के पंखों को फैलाकर। लड़की के शरीर में भूमि है, प्रभु इसे आधार दो। लड़की के शरीर में भूमि है, प्रभु इसे आधार दो। वह सह सके सारे सुख दुख और गड़ न जाए जमीन में बात बात पर। लड़की के शरीर में आकाश है, प्रभु इसे विस्तार दो। उसका आसमान न रहे सीमित घर की खिड़की तक। उसमें एक छाएं हो, अनंत कल्पनाएं हो, और कल्पना न हो विलीन अंतरिक्ष में। लड़की के शरीर में समाकर पंच तत्व भी खो रहे हैं अपनी मूल प्रवृत्ति और हो रहे हैं नष्ट। लड़की के शरीर में समाकर पंच तत्व भी खो रहे हैं अपनी मूल प्रवृत्ति और हो रहे हैं नष्ट। प्रभु बचाना अपने इन पंच तत्वों को, वरना कहाँ रह जाएगी पृथ्वी और कहाँ आप। अगली कविता है पिता का कमरा। पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय। पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय। अब भी चरमराती है टूटी कुर्सी, बिस्तर की गंधाती चादर पर। अब भी पड़ती हैं वैसी ही सलवटें जैसी पड़ती थी पिता के समय। पिता का कमरा खांसता खकारता है वैसे ही जैसे खांसते थे पिता। उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिन्हें वह छोड़ कर गए अपने आईने के पास। उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियाँ जिन्हें वह छोड़ कर गए अपने आईने के पास। हाँ अभी वैसा ही है पिता का कमरा, हाँ अभी वैसा ही है पिता का कमरा जैसा था उनके समय। तब तो मैंने उसे नहीं देखा, अब देख रहा हूँ जब बेटे द्वारा फेंक दिया गया हूँ पिता के कमरे में। पिता का कमरा खुश है, वह कब से कर रहा था मेरा इंतजार। अगली कविता है औरतें। सात समुंदर से दुख लेकर आई औरतें और बत्तख के सफ़ेद पंख बराबर हल्का सुख। सात समुंदर से दुख लेकर आई औरतें और बत्तख के सफ़ेद पंख बराबर हल्का सुख। वे आईं उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, नदियों की तरह करती हुई धरती का जलाभिषेक। वे आईं उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, नदियों की तरह करती हुई धरती का जलाभिषेक। उन्होंने उठाए अपने सीने पर पहाड़, सिर पर काली जलराशि, नितंबों पर पठार, जंघाओं पर शीशम के तने, आँखों में आकाश। उन्होंने फैलाई अपनी बाहें, अपनी देह में भर ली उन्होंने समूची पृथ्वी और कोख में सारी वनस्पतियाँ। उन्होंने जने बच्चे, गड़े घर, रचे उत्सव, रंगों से सजाई पृथ्वी, धरती की सतह पर बिछाई हरी चादर और दूर बैठकर देखती रहीं उन्हें अपने बाल सुखाती। धरती की सतह पर बिछाई हरी चादर और दूर बैठकर देखती रहीं उन्हें अपने बाल सुखाती। उन्होंने उठाई कुदाल, तोड़े पत्थर, तोड़ी रूढ़ियाँ, तोड़े अपने हाड़, सहते हुए टूटने की पीड़ा वे हंसी तो चांदनी बिखरी। उन्होंने उठाई कुदाल, तोड़े पत्थर, तोड़ी रूढ़ियाँ, तोड़े अपने हाड़, सहते हुए टूटने की पीड़ा वे हंसी तो चांदनी बिखरी। काली रात में तारे तोड़कर उन्होंने दी हमें सुबह सौगातें। काली रात में तारे तोड़कर उन्होंने दी हमें सुबह सौगातें। सात समुद्रों का दुख तो लेकर आई औरतें, सात समुद्रों का दुख तो लेकर आई औरतें, पर बत्तख के सफ़ेद पंखों जैसा हल्का सुख भी जो डूबता नहीं कभी दुख के सागर में, जो डूबता नहीं कभी दुख के सागर में। अगली कविता है बूढ़ी किताबें। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियाँ, चरमराती है उनकी भी देह, उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियाँ, चरमराती हैं उनकी भी देह, उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। ऐसे में उन्हें संभालते भर हैं हम, पढ़ते नहीं जैसे संभाला जाता है हमें हमारे अंतिम दिनों में। फड़फड़ाते हैं उनके भी पन्ने जैसे हमारी बाहें लेने के लिए अपनी पोती को अपने आगोश में। फड़फड़ाते हैं उनके भी पन्ने जैसे हमारी बाहें लेने के लिए अपनी पोती को अपने आगोश में। समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, पीले पड़ते जाते पृष्ठ। समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, पीले पड़ते जाते पृष्ठ। खोती जाती है उनकी मनसलता, बदल जाती हैं लिपियाँ, छूट जाते हैं उनके अर्थ हमसे, पकड़ में नहीं आता और छोर। फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है जैसे हम रहते हैं अपनों की यादों में कुछ समय। फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है जैसे हम रहते हैं अपनों की यादों में कुछ समय। कुछ समय हाँ, वे हमसे कुछ ज़्यादा समय रह सकती हैं हमारी स्मृति में। किताबें किताबें हैं, किताबें किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। किताबें किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। वे कालजयी नहीं होती और ना चिर स्मृत।
1: ये अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्यपाठ, प्रस्तुति राजहंस सेठ की थी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत पहला गीत हमने लिया है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य और जोनिता गांधी की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
5: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
4: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
5: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
6: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अब समय है आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुन्ना भाई MBBS से। इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने, इस गीत को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ ने। आइए सुनते हैं

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: कृपया ध्यान दें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पात्र लाभार्थियों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आज ही आयुष्मान ऐप से अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं या डायल करें 1422।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का, जिसे हमने लिया है फिल्म ड्रीम गर्ल से। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीतबद्ध किया है मीत ब्रदर ने, और इस गीत को अपनी आवाज़ भी दी है मीत ब्रदर्स ने ही। आइए सुनते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

Thank you.

कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम के अगले गीत को शामिल करने का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की है। आइए सुनते हैं फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत तो अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म जर्सी के इस गीत के साथ, जिसको लिखा है शैली ने। संगीत सचेत परंपरा का है और आवाज़ आवाज़ सचेत टंडन की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता UCC लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड UCC को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त

0: उत्तर आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाज़ों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।

0: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्षदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार ना बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की।

0: medal at World Cup final in Mexico. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
2: अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज कलाकार हैं अक्षदा वाकणकर और हम सुनवा रहे हैं आपको इनकी आवाज़ में कुछ गज़लें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये पहली गज़ल।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं अक्षदा वाकणकर और हम सुनवा रहे हैं आपको इनकी आवाज़ में कुछ गज़लें। कार्यक्रम सुगम संगीत अब अपने समापन की ओर है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कलाकार अक्षदा वाकणकर की आवाज़ में कार्यक्रम की ये अंतिम गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे आज के कार्यक्रम में कलाकार थीं अक्षदा वाकड़कर। इनके द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ गज़लें। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
1: संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनमई सवेरा इस वक्त आप सुन रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है इस कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, क्योंकि वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का। तो पहले सुन लेते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कल समापन हुआ। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की सफलता के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। श्री शाह ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में पिछले 1.5 साल में रोजाना दूध का संकलन 8,73,000 किलो से बढ़कर जुलाई 2026 में करीब 12,00,000 किलो हो गया है। प्रदेश में कल इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में एक साथ 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहे, जिससे कई जिलों में तेज बारिश हुई और प्रदेश की हॉकी खिलाड़ियों खैदम शिलिमा चानू और कृष्णा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चीन में हुए

0: महिला जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोता साथियों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आयुष तोमर। आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत त्योहारों और परंपराओं की भूमि है। हमारे यहाँ पर्व केवल धार्मिक आस्था से जुड़े नहीं होते, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों का संदेश भी देते हैं। गणेश चतुर्थी भी एक ऐसा ही पर्व है जो हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विनम्रता, एकता और शुभ कार्यों की शुरुआत का संदेश देता है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश जी की पूजा और स्मरण से करने की परंपरा है। उन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन से बाधाएं दूर करते हैं और उन्हें बुद्धि तथा विवेक प्रदान करते हैं। गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अनेक प्रेरणाएँ समेटे हुए हैं। उनका विशाल मस्तक हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कान हमें धैर्यपूर्वक सुनने का संदेश देते हैं। उनकी छोटी आँखें एकाग्रता का प्रतीक हैं। उनका छोटा मुख हमें कम बोलने और अधिक सुनने की सीख देता है। उनका विशाल उदर जीवन की परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने का संदेश देता है। इस प्रकार भगवान गणेश का स्वरूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का संदेश भी देता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व की विशेष धूम देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त देश के अनेक राज्यों में गणेश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से लोकप्रिय बनाने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव के माध्यम से लोगों को एक मंच पर लाने और समाज में एकता तथा राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया। उस समय गणेश उत्सव केवल पूजा का अवसर नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता और सामूहिक भागीदारी का माध्यम भी बना। आज भी गणेश उत्सव हमें यही संदेश देता है कि समाज की शक्ति उसकी एकता में निहित है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की चिंता कर रही है, तब गणेश चतुर्थी हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है। उत्सव मनाते समय हमें प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं का उपयोग किया जाए। प्रकृति रंगों और ऐसी सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो जल और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। विसर्जन के समय भी हमें जल स्रोतों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सच्ची श्रद्धा वही है जिसमें प्रकृति के प्रति सम्मान भी शामिल हो। आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम ये संकल्प लें कि उत्सव को उत्साह के साथ मनाएंगे, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। गणेश चतुर्थी युवा पीढ़ी के लिए भी अनेक प्रेरणाएं लेकर आती है। आज के प्रति स्पर्धात्मक युग में सफलता के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। हमें विवेक, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी आवश्यक रूप से अपने अंदर समाहित रखना है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और बुद्धिमता से रास्ता खोजा जाए तो हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हुए आधुनिक ज्ञान और तकनीक को भी अपनाना चाहिए। युवा शक्ति यदि ज्ञान, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े तो भारत को विकसित सशक्त राष्ट्र बनाने का सपना निश्चित रूप से साकार हो सकता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव सबसे सुंदर पक्ष में सामूहिकता को दर्शाता है। जब किसी मोहल्ले या समुदाय में गणेश जी की

स्थापना होती है तो अलग अलग परिवारों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। पूजा भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों में सभी की भागीदारी होती है। यही तो हमारे भारतीय त्योहारों की

का विकास करें और हमारे परिवार में सुख शांति और समाज में सद्भाव बनाए रखें, हमारे देश को प्रगति समृद्धि और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। आइए इस गणेश चतुर्थी पर हम केवल भगवान गणेश की पूजा ही ना करें बल्कि उनके जीवन संदेशों को भी अपनाने का संकल्प लें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। ज्ञान को अपनाएं, विवेक को जीवन का आधार बनाएं, प्रकृति की रक्षा करें और समाज में सद्भाव बढ़ाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आकाशवाणी ग्वालियर के सभी श्रोतागणों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ग्वालियर। श्रोता साथियों, लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संदेश।
6: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश।
7: प्यारे देशवासियों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं। हमारा देश भारत भाषाई विविधता और सांस्कृतिक

एक समृद्धि की अनुपम भूमि है। सब लोग कहते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, वो हमारी कमी है, मगर मैं मानता हूं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत इतनी सारी भाषाएं होना है। अपने साथ हर भाषा एक इतिहास, लोक परंपरा और जीवन दृष्टि को लेकर चलती है, जो हमारी नई पीढ़ी के संस्कार को भी आगे बढ़ाती है। यही भाषाई बहुलता भारत की विविधता में एकता की भावना को सशक्त बनाती है। भाषा केवल संवाद का साधन नहीं होती है, वह किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब वह सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े। हिंदी किसी भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के बीच आत्मीय संवाद और राष्ट्रीय एकात्मता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्य का सबसे सुंदर प्रमाण हमारा अपना इतिहास है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। महात्मा गांधी ने 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की संपर्क भाषा हिंदी को बनाया और देश को जय हिंद का नारा दिया, यानी हिंदी को सभी लोगों ने जन संवाद की भाषा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी कभी नहीं थी। मेरी अपनी मातृभाषा भी गुजराती है, पर जब मैं देश में किसी भी कोने में जाता हूँ तो जो भाषा मुझे वहाँ के सामान्य जन से सीधा जोड़ती है वह हिंदी है। हिंदी की यात्रा को देखिए तो उसमें पूरे भारत की यात्रा दिखाई देती है। आदिकाल में विद्यापति की पदावली, पृथ्वीराज रासो की वीर गाथाएं, फिर भक्ति काल का वह अद्भुत युग जब तुलसीदास जी ने राम कथा को घर घर पहुंचाया और सूरदास जी ने वात्सल्य को स्वर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा के विचारों ने राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अनुभव किया था कि स्वभाषा और स्वाभिमान के बिना स्वराज की संकल्पना अधूरी ही होती है। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय भाषाएं ही राष्ट्र निर्माण का, प्रशासन का और जन जन तक विकास को पहुंचाने का माध्यम बनी। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जन जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचार को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी विरासत के साथ संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पर स्वतंत्रता के बाद एक विडंबना भी पनपी। राजनीतिक स्वाधीनता तो मिली, पर स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान के विषय को हाशिए में डाल दिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गुलामी की इस मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया और इस मुक्ति में भाषा की भूमिका केंद्रीय है। राजपथ का कर्तव्य पद बनना केवल नामकरण नहीं था। अंग्रेजों के बनाए दंड आधारित कानूनों की जगह जन केंद्रित 3 कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, यह आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। आज नई शिक्षा नीति मातृभाषा को शिक्षा के केंद्र में रखती है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाएं अनेक भारतीय भाषाओं में हो रही है। इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया। इसकी 7वीं धारा है भारत का सॉफ्ट पावर। किसी भी राष्ट्र के सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वाहक

0: भाषा ही होती है। योग, आयुर्वेद, साहित्य, सिनेमा, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, ये सब दुनिया तक हमारी भाषाओं के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। एक आशंका थी कि तकनीक के युग में भारतीय भाषाएं कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन मोदी सरकार में हिंदी सहित सभी भाषाएं तकनीकी विकास का स्वर्णिम युग देख रही हैं। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय टूल आज भारतीय भाषाओं के बीच संवाद को सहज बना रहा है। 8,27,000 से अधिक प्रविष्टियों वाला हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश ज्ञान साझाकरण का समृद्ध माध्यम बन चुका है। 2024 में स्थापित भारतीय भाषा अनुभाग प्रशासनिक संवाद को भारतीय भाषाओं में सुगम बना रहा है। AI और अनुवाद तकनीक ने भाषा की दीवारें गिरा दी हैं। अब कोई भी भारतीय अपनी भाषा में सोचकर पूरी दुनिया से संवाद कर सकता है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल में संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के 4 नए खंड राष्ट्रपति जी को सौंपे हैं। अंत में युवाओं से एक बात मैं करना चाहता हूं, दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सके जरूर सीखे, पर अपनी भाषा को छोड़िए मत। मैं देश के सभी अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करने का आप आग्रह रखिए। मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, इस लघुता ग्रंथि से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। भाषा ही हमें अपनी माँ से, अपने मिट्टी से, अपने इतिहास से और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। यह वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष भी है। वह गीत जिसने भाषा को स्वाधीनता का शस्त्र बना दिया था। आइए इस अवसर पर संकल्प ले कि हिंदी और सभी भारतीय भाषा को हम 2047 तक विकसित भारत बनाने की इस यात्रा का सशक्त माध्यम बनाएंगे। आप सभी को पुनः राजभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।
1: अभी आप हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं कमल कामले, और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वॉयलिन वादन के द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे कमल कामले। इन्होंने प्रस्तुत किया वायलिन वादन पर राग गुर्जरी तोड़ी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। जिले की चिट्ठी का प्रसारण अब भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: चिट्ठी प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचन स्वर शेख महजबी अलमा। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। इस अभियान के तहत राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नए जनपद पंचायत कार्यालय और रेस्ट हाउस के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता देखी और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए बन रहे सामुदायिक भवन का भी जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने पीलूखेड़ी और नरसिंहगढ़ का दौरा किया। पीलूखेड़ी में उद्योगपतियों से संवाद कर पानी, सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं नरसिंहगढ़ में राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और मामलों को बेवजह लंबित नहीं रखने की हिदायत दी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय गोयल ने भी राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों में व्यवस्थाओं और शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया। राजगढ़ जिले में अच्छी बारिश से सोयाबीन की फसल तेजी से बढ़ी है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। हालांकि कुछ खेतों में पौधों की जरूरत से ज्यादा बढ़वार के कारण फूल और फलियां कम बनने की चिंता भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश से नदियों और जल स्रोतों का जलस्तर बढ़ गया है और मोहनपुरा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी से निचले इलाकों के करीब 150 से 200 गांवों के रास्ते प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। बलराम जयंती पर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिक खेती और प्राकृतिक कृषि की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने बीजामृत, जीवामृत और संतुलित उर्वरक इस्तेमाल के साथ मिट्टी की सेहत बनाए रखने पर जोर दिया। किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की सलाह दी गई और उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया गया। सिविल अस्पताल सारंगपुर में करीब 56 लाख रुपए की लागत से 4 अत्याधुनिक मशीनें शुरू की गई हैं। इन मशीनों से अब सारंगपुर और आसपास के मरीजों को कई गंभीर बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों या निजी केंद्रों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने अपने जन्मदिन पर इन मशीनों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर राजगढ़ में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। भाजपा के जिला स्तरीय कार्यशाला में अभियान की तैयारियों पर चर्चा हुई और बूथ से जिला स्तर तक कार्यक्रम चलाने की रणनीति बनाई गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान के जरिए सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यावरा के बूथ क्रमांक 71 पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान, महिला सशक्तिकरण, विरासत संरक्षण, नवाचार और जन भागीदारी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के विचार सुने गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने राजगढ़ के जिला अस्पताल का दौरा कर नवनिर्मित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान साफ सफाई, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर रखने पर चर्चा हुई। ब्यावरा के ट्रेशिंग ग्राउंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पौधरोपण कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उसके बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गई। महिलाओं की इस पहल में स्वच्छता के साथ रोजगार की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया। ब्यावरा के श्री खाटूश्याम मंदिर में एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर समिति के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। मंगल आरती के साथ शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। खिलचीपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में कथक, नृत्य नाटिका और सूफी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां हुई। कलाकारों ने कृष्ण जन्म, बाल लीलाओं से लेकर गीता के संदेश और मीरा सुदामा की भक्ति तक को मंच पर जीवंत किया। गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज जिले में आज घरों से और चौराहों पर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। वहीं हरतालिका तीज पर महिलाएं व्रत रख रही हैं। पर्व को देखते हुए बाजारों में सुहाग सामग्री की खरीदारी की जा रही है। अब बात जिले की ऐसी सफलता की कहानी की जहां सरकारी योजना का लाभ लेकर एक दंपति ने अपने सपनों को कारोबार में बदला और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। संत रविदास व रोजगार योजना के तहत मंजूबाई और उनके पति कमल सिंह ने 3 लाख रुपए का ऋण लेकर राजगढ़ में MP ऑनलाइन सेंटर और बैंक CSP शुरू किया। आज उनका कारोबार अच्छी तरह चल रहा है। खर्च व ऋण की किस्त के बाद भी उन्हें करीब 13,000 रुपए की मासिक बचत हो रही है। योजना का लाभ, मेहनत और आत्मविश्वास ने इस परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दी है। राजगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस का था, वाचन था शेख महजिबी अलमास का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत की हमें फरमाइश करी है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल ने, शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, और कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, राणी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्हार ने। और आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांव जाखौद राजस्थान से। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक, संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक यादव, उर्मिला यादव और चांदनी देवी यादव की। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इसी के साथ दादरी गेट भिवाणी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा जी ने भी फरमाइश की है। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म हद कर दी आपने से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत आनंद राज आनंद का है और आवाज़ उदित नारायण और विभा शर्मा की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत कार्यक्रम क्षमा कीजिएगा, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है धानोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल की। इसी के साथ हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना मोहम्मद साजिद अली मोहम्मद जाहिद अली और मोहम्मद शाहिद अली की। गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर मीका जयतेग विर्क और मीका विर्क। ग्राम महसवाड़ी मलकानपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वकील वाल्मीकि धाड़े निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े की। साथ ही टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी डॉक्टर प्रशांत थांदी डॉक्टर प्रीतम थांदी और बेबी वामिका और वाणी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म दूल्हे राजा से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद मिलिंद ने और इस गीत को अपनी जिसको लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है और इस गीत को आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पटेल नगर मलौद से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया के साथ साथ गुड्डू की। और इसके अलावा हमें फरमाइश आई है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ के दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा की। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नहाटा, दीक्षा और कुश मूणत की। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म जिस देश में गंगा रहता है से इस गीत की, जिसको लिखा है देव कोहली और प्रवीण भारद्वाज ने। संगीत आनंदराज आनंद का है और आवाज़ बाली ब्रह्मावत और सुनिधि चौहान की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: मन की बात है जन जन की बात, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात।
2: सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपने वाहन की गति धीमी रखें। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें क्योंकि दाहिनी ओर से वाहन ओवरटेक करते हैं। कभी भी वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक ना करें। सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड्स के निर्देशों का पालन करें। बेवजह हॉर्न ना बजाएं और बड़े वाहनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

0: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नागपारा भिरई से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईश राज सूर्यवंशी, श्री चंद्रकांत सूर्यवंशी, कुमारी प्राची सूर्यवंशी और कुमारी ट्यूशी सूर्यवंशी। इसी के साथ हमें एक फरमाइश और आई है जो कि कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। इसी के साथ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की। आदर्श नगर मलोट से राज वर्मा, मीना राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा के साथ साथ निवान शर्मा की भी हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर की हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। और इन सभी लोगों ने फरमाइश करी है फिल्म हीरो नंबर 1 से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है और आवाज़ कुमार सानू और विनोद राठौर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लच्छनपुर से रामजी साहू की, जीवनलाल रजक की, निम्मी शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू की। इसी के साथ हमें एक फरमाइश और प्राप्त हुई है।

जो कि है भोपाल से, भोपाल से है परमीत राय की, और गुना से है अशोक कुमार शर्मा की। इसी के साथ गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित की। और इन सभी लोगों

ने फरमाइश करी है। फिल्म हसीना मान जाएगी से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और आवाज़ दी है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म हसीना मान जाएगी से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820262 35 మ్యాక్స్ టచ్ చెక్.

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम में अब समय है कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश को शामिल करने का, क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की ओर है। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। मनमोहन राजावत, राज और मधु राजावत, राशि दीक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार की। बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की। इसी के साथ मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमिलागंज जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांशी वर्मा और ऋषि वर्मा की। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म जोरू का गुलाम से इस गीत की, जिसको लिखा है समीर ने। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज़ सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर फिल्म जोरू के गुलाम से इस गीत को।
1: घोड़ी

इसी के साथ कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10:58 होने को है। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: خاص خبریں۔
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला टी20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी जनसंचार, सुशासन और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी और तीज के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। शाम 7 बजे होने वाले आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा गया है। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने IPS और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। और मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमित सिंह पदम का सितार वादन।
2: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
3: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
2: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी 3 पीढ़ियों पुरानी पारिवारिक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य

0: ये यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम, जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
1: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grid artist of Akashvani and an acclaimed sitarist, carrying the generations old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
0: Akashvani ke a grid kalakar Sumit लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
1: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रत्न सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
0: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
1: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and Taal Kacheheri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
0: Aaj ke karyakram mein Sumit Singh Padam apne vadan ki shuruaat Raag Rageshwari se kar rahe hain, जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
1: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Raag Rageshwari, wherein alap is followed by jod alap, jod jhala, and then vilambit gat in teen taal. Madhyalaya gat in mat taal and drut gat is in teen taal.

0: ये था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम will now present राग देस। आलाप is followed by मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: था सुमित सिंह पदम द्वारा।
1: अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के इस कार्यक्रम को अभी आपने सुना, जिसमें कलाकार थे सुमित सिंह पद्म, इनसे आपने सुना सितार वादन। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में हमने जिन श्रोताओं के पत्रों को शामिल किया है उनके नाम इस गीत के बाद हम आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला नगमा।

इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। शिवहरी का संगीत है और बोल हैं जावेद अख्तर के। फिल्म का नाम सिलसिला।

आपकी फरमाइश के इस पहले नगमे को हमने हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर सुनवाया। ये हैं ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी। इन्होंने ये चिट्ठी हमें लिख भेजी है वाशिम महाराष्ट्र से। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन की आंखें फिल्म का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद, माफ़ कीजिएगा, इसमें आवाज़ है रफ़ी साहब की। साहिर ने इस गीत को शब्द दिए हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और सुनना चाहते हैं हमारे ये दोस्त 40 गांव ज़िला जलगांव महाराष्ट्र से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखा, आरती, नीरज, नव्या, तुषार, गोविंद, मनकर्णाबाई, आरोही, प्रकाश, दियान और श्याम ठाकुर, साथ में है इनका पूरा सूर्यवंशी परिवार। अगला खत आया है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित का। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं मन की नाखें फिल्म का ये गीत।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ में मन की आंखें फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। सुनवाना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बरीक, जैतेक बरीक और मीका बरीक। शेरकोट ज़िला बिजनौर से ये अगला ख़त आया है मोहम्मद हलवायान, मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी और बिट्टू भैया की, साथ में हैं साजदा रानी और हिना कौसर। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ ये गीत। बोल आनंद बख्शी के धुन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम मिलन।
1: पवन करे सोरू

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो। इन्होंने हमें ये ख़त लिख भेजा है छबड़ा राजस्थान से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये चिट्ठी लिख भेजी है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभम चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने। पटेल नगर मालौर पंजाब से ये अगला ख़त लिख भेजा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजौरिया ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये गीत है रफ़ी साहब का गाया हुआ, आरजू फिल्म का नाम है। हसरत जयपुरी ने इस गीत को शब्दों से सजाया है और धुन है शंकर जयकिशन की।

कुछ और नाम जिन्होंने इसी गीत को सुनना चाहा था, गोला बाजार बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम कविता, आयुषी और सानवी गुप्ता। कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये बत्ता परिवार का खत आया है, जिनमें शामिल हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, ऋतिक और वंश बत्ता। आदर्श नगर मालोट पंजाब से ये चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी दोस्तों ने, यशराज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ, शायना और नवीन शर्मा। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आपने सुना रफ़ी साहब को, आरजू फिल्म का नाम था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने और बोल थे हसरत जयपुरी के। और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:25 होने को हैं, हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:30 हुए हैं, ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जमुनिया, आज इसकी 27वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

इंसान अगर ठान ले तो असंभव नजर आने वाले काम को भी संभव करके दिखा सकता है। जमुनिया ग्राम फतेहपुर की पहली महिला सरपंच ने यही कर दिखाया, जिसकी कहानी आप अब तक सुनते आ रहे हैं। कभी गांव के एक गरीब और उपेक्षित परिवार की अशक्त और अशिक्षित बहू आज फतेहपुर ग्राम पंचायत की सशक्त और सुशिक्षित सरपंच है, जिसका सम्मान सारा गांव करता है। साहस, दृढ़ निश्चय, आंखों में गांव के विकास का सपना और दिल में राह में आने वाली कठिनाइयों से जूझने का जज्बा, यही तो पूंजी है जमुनिया की। इसी पूंजी को लेकर जमुनिया ने ग्राम विकास की बहुत सी सरकारी योजनाओं को गांव वालों के सहयोग से अपने गांव में साकार कर दिखाया। कभी जो एक पिछड़ा हुआ गांव हुआ करता था, आज वही फतेहपुर ग्राम बहुत सी आधारभूत

मजबूत संरचना और सुविधाओं से संपन्न गांव है, जिसकी पंचायत को जिले की पंचायतों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली पंचायत घोषित किया गया है। गांव की सरपंच जमुनिया को भी 10,000 रुपए नगद, शॉल और श्रीफल से कृषि मंत्री ने सम्मानित किया। इस उपलब्धि से प्रसन्न और उत्साहित फतेहपुर के गांववासियों ने भी अपने प्रिय सरपंच जमुनिया का सम्मान 15,000 रुपए नगद से किया। जमुनिया ने पूरे 25,000 रुपए ग्राम सभा को दान कर दिए। जमुनिया उसके परिवार की उन्नति के मामले में भी सजग थी। उसका बेटा तेजस आज कलेक्टर और बेटी रूपस डॉक्टर है। बेटा बेटी दोनों माँ के सम्मान से गौरवान्वित और प्रसन्न हैं। अब आगे

0: कर्नल, रामगढ़ वाली बस का टाइम हो रहा भैया। काय भैया हैं, इतनी मस्ती में किते जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहे हैं भैया।
0: मंदिर काय के लाने?
1: आटा पिसाने
0: है?
1: अरे भैया, सुहन काका ने मंदिर में गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा है, सोई जा रहे हैं मंदिर।
0: ठहर भैया, हम भी चलते हैं, धर्म कर्म का काम है। ए छोटू, ए जरा दुकान संभालियो, हैं हम अब याद है।
1: जल्दी करो भैया, आरती का टाइम हो रहा है।
0: हो
1: चलो बैठ जाओ। चलो भैया
0: चल।
1: लो उतरो भैया हमारे हेलीकॉप्टर से। लो सुन, आरती भी चालू हो गई।
0: हो भैया।

0: था भाई से हमारी विनती है भैया कि प्रसाद जरूर लेकर जाना।
1: कक्का, कक्का तुमने तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम कर डाला।
0: अरे हम कौन होते हैं भैया करने वाले, सब ऊपर वाला करता है।
1: सो तो ठीक कही आपने। जमुनिया भौजाई भी आ गई।
2: पाए लगी कक्का।
0: जमुनिया बेटी खुश रहो बिटिया, खूब काम करो, खूब नाम करो। ये लो प्रसाद
2: खाओ कक्का, बस ऐसो ही आपका आशीर्वाद बनो रहे कक्का। कक्का शाम को पंचायत भवन के ओटले पर आए जे हैं, तब जानेंगे कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा।

0: की फसल बो कि पानी कम लगे।
1: और बताओ सोहन कक्का, कैसी रही तीर्थ यात्रा?
2: अरे जामुनिया बिटिया आ जाए तो शुरू करें भैया, है आन दो बाय।
3: हाँ।
4: आ गई कक्का, जमुनिया आपकी।
2: हाँ भाई, हाँ तो भाई लोग शुरू करें।
3: भैया शुरू करो भैया।
2: तो कहा है भैया कि जिंदगी में पहली बार इतनी दूर की यात्रा पर गए, काहे से कि पैसा कभी राय नहीं हमारे पास, तो जाते कैसे?
5: अब तो हुआ है ना कक्का,
2: आओ
5: तो छोड़ो अफसोस और शुरू करो तीरथ की कहानी।
2: हाँ ए भैया इतना सुनो पहले। हाँ तो अब का भाव कि जहाँ से पहले हम गए काम मथुरा जी, और बा के बाद लगे हाथ वृंदावन और गोकुल भी हो लिए, और साफ फिर हरिद्वार और ऋषिकेश और फिर बद्रीनाथ गए।
0: अरे वाह।
2: हाँ, और वहां से सीधे वैष्णो देवी के दर्शन।
0: ये माता दी।
6: अरे बाप रे, ये तो बड़ा लंबा चक्कर लगा लिया आप।
2: अरे भैया, हमने कमला की अम्मा से कही थी कि तुम्हारे जिंदगी भर को दुख हम एक ही बार में मिटा देंगे।
0: कक्का,
2: हाँ
0: वो खाना पीना सभी जगह अलग अलग स्वाद का मिला होगा, है ना?
2: हाँ बात तो ठीक कही भैया तुमने, पर स्वाद अलग होवे से का
0: है?
2: मिला बेहतरीन खाना, सब जगह मिला।
0: हाँ।
2: बस एक तकलीफ रही भैया।
0: वो का कक्का?
2: ठहरवे की, रेवे की, रुकवे की। हाँ
5: का कह रहे हो कक्का?
2: हाँ
5: हाँ, जगह तो होटल धर्मशाला सराय हुत है, अब पैसों भारी खर्च करनो पड़े।
3: जी तो है,
2: बात पैसा की नहीं थी बेटा।
5: तो कक्का
2: होटल धर्मशाला सराय जहाँ कमरे की बात करो तो भाई लोग पहचान पत्र की बात करें। हाओ पहचान पत्र,
0: पहचान पत्र।
2: हाओ
0: कमरा किराए लेने के लिए हद है।
4: सुरक्षा के कारणों से आजकल इन जगहों पर पहचान पत्र मांगते हैं।
2: हाओ पर ये बात हमको तो ना पता थी, सो हर जगह हाथ पैर जोड़ने पड़े ठहरबे की खातिर।
6: पर बिटिया ये गरीब गुरुवा का करें, उनके पास तो कोनो पहचान पत्र नहीं होतो है।
4: इसीलिए सरकार देश के हर नागरिक के लिए उसकी पहचान के लिए 12 अंकों के नंबर वाला एक प्रोजेक्ट लेकर आई है।
5: वाह भाई, ये भला कौन सा प्रोजेक्ट है?
4: हाँ नया ही समझो, इसका नाम है आधार।
6: आधार?
2: आधार?
5: आधार?
2: तो बिटिया ये कौन सी नई बला आ गई अब?
4: ये बला नहीं है काका, बल्कि भला है हम सब के लिए, कमाल की चीज है।
6: तो सरकार सबको एक नंबर अलाट कर देगी है?
4: जो नंबर पाने के लिए अर्जी करेगा उसको।
5: अर्जी कौन लगा सकता है?
4: सभी आदमी, औरत, हाल का पैदा बच्चा, हमारा विदेश में बसा आदमी, और तो और हमारे यहाँ रहने वाले विदेशी भी, सभी अर्जी लगा सकते हैं।
7: सभी को राम राम भैया।
8: राम राम भैया। राम राम। राम राम
7: भैया। जमुनिया जी, अब कहे की अर्जी लगाने की बात कर रही हैं?
2: अरे जयंत बेटा, कौनो आधार नंबर की बात कर रही है जमुनिया?
7: काका, आधार तो प्रोजेक्ट का नाम है, उस नंबर को कहते हैं UID नंबर।
6: हाँ हाँ हाँ, अभी अभी सरपंच जी ने बताया था। हाँ
5: कुछ बातें सरपंच जी ने बताई, बाकी आप बता दो भैया।
7: हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं, रात के 9 बज गए हैं, सुबह की बस से मुझे सरपंची के साथ तहसील ऑफिस, और समय रहा तो कलेक्टर ऑफिस भी जाना है। अच्छा सभी को राम राम भैया।
8: राम राम भैया।
3: राम राम। राम राम।
9: ओ
7: जमुनिया, तहसीलदार साहब से मुलाकात अच्छी रही?
4: इस बार पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद नहीं थी कि राशि इतनी जल्दी स्वीकृत हो जाएगी।
7: अरे होती कैसे नहीं?
4: क्या कह रहे थे आप?
7: मैंने कहा आपके कामों से आपकी धाक बन गई है यहाँ, और आपका प्रस्ताव तो स्वीकृत होना ही था।
4: मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा काम मत कहा करिए, मैं पंचायत के लिए काम करती हूँ, इसलिए वो हम सब का किया काम है।
7: जी मैडम जी।
4: मैडम जी, वो मैडम जी क्या होता है, मैं जमुनिया ही ठीक हूँ।
7: जी जी जी, माफ कीजिए।

0: ये लोग ना पता नहीं कब समझेंगे कि आगे बढ़ो के नारे से देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश तो आगे बढ़ेगा काम करने से।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर कुछ लोग नारे लगाने में लगे रहे तो अच्छा है।
0: क्यों?
1: सभी काम में लग जाएं तो देश कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाएगा, है ना?

0: राम राम सरपंच जी, राम राम जैन जी।
1: राम राम भैया।
0: बहुत से लोग आएंगे आज पंचायत के दफ्तर, आप पहुंचेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर पहुंचूंगा। आप लोगों को आधार प्रोजेक्ट के बारे में जो बताना है।
1: आप थकते नहीं क्या?
2: आप थकने का मौका ही कहाँ देती हैं।

0: सुनो सुनो भैया, अरे सुनो भैया, सरपंच जी और जयंत जी गांव लौट आए हैं तहसील से।
1: हम लोगों को भी आधार योजना की जानकारी मिल जाएगी। लो अब वो दोनों भी आई गए।
2: सबको नमस्कार।
3: नमस्कार भैया, राम राम।
4: हाँ तो हम आधार योजना की बात कर रहे थे। पहले आप बताइए, जमुनिया जी ने आपको क्या क्या बता दिया, फिर मैं उसके आगे बताऊंगा।
1: सरपंच जी ने बताया था कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार हर आदमी को 12 अंकों वाला एक नंबर अलाट करती है।
5: हर एक को, यानी जो जो अर्जी लगाता है उसको? अर्जी कौन कौन लगा सकता है ये भी बताया।
3: अरे कक्का, आपको ये भी तो बताया था कि ये भला नहीं है, ये तो देश का भला है।
4: चलिए अब आगे की जानकारी आपको देते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है जो आधार का काम देखती है।
1: ये तो बड़ा भारी नाम है भैया, हम तो बोल भी ना सकत।
4: आप इसे UIDAI कह सकते हैं। हर एक की एक विशिष्ट पहचान होती है, जैसे नाम, पति या पिता का नाम, घर का पता, उम्र आदि आदि होती है ना?
1: हाँ होती होती है भैया।
4: और जो लोग दस्तखत नहीं कर सकते उनसे अंगूठा लगवाया जाता है ना? जानते हैं क्यों?
1: अरे क्योंकि हर एक के अंगूठे का निशान अलग होता है भैया।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हर एक के केवल अंगूठे के नहीं बल्कि दसों उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का रंग भी अलग होता है।
5: अरे तो भैया अंगूठे का निशान तो स्याही लगा कर लेते हैं, पर आंखों की पुतलियों के रंग के निशान?
4: स्याही से नहीं, मशीन की मदद से लेते हैं। हाँ उंगलियों के निशान भी मशीन की मदद से लेते हैं।
0: भैया ये कौन लेता है और कहां से लेता है?
4: सरकार ने जगह जगह आधार एनरोलमेंट सेंटर खोले हैं, वहां जाकर फॉर्म भरना होता है।
0: अच्छा,
1: कोई फीस लगती है का फॉर्म भरवे की?
4: अरे नहीं नहीं, कोई फीस नहीं लगती।
1: अब फिर ठीक है।
2: पर फॉर्म भरने के लिए एक पहचान पत्र, घर के पते का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, और हाँ दो छोटे छोटे यानी पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी है।
5: अच्छा तो ये सारी बातें पता करके आए आप दोनों तहसील से?
2: उसके लिए कक्का तहसील दफ्तर जाने की क्या जरूरत?
4: हाँ अब तो अपने पास कंप्यूटर है, सरकार अपनी योजनाओं की सारी जानकारी फॉर्म आदि कंप्यूटर पर डाल देती है ताकि लोगों को भटकना नहीं पड़े।
1: आजकल तो भैया फॉर्म भी कंप्यूटर पर भर लेवे हैं, हमने सुना जी।
4: हाँ ठीक सुना है, पर इसका फॉर्म भरने एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होता है क्योंकि वहां वो आपकी दसों उंगलियों और पुतलियों के रंग का निशान मशीन से लेते हैं।
3: अच्छा ये पहचान और पते के लिए प्रमाण पत्र के लिए क्या ले जाना होगा?
2: पहचान के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी पहचान पत्र ले जा सकते हैं। सरकार पहचान के लिए थोड़े बहुत नहीं 18 पहचान पत्र स्वीकार करती है।
5: हमारे कने फोटो लगी बैंक खाते की पासबुक है। हाँ
4: हाँ वो भी पहचान के साथ पते के प्रमाण पत्र के रूप में भी स्वीकार की जाती है। पते के प्रमाण पत्र के लिए पानी, बिजली और टेलीफोन के बिल भी दे सकते हैं।
2: नरेगा कार्ड और राशन कार्ड भी चलता है पहचान और पते के प्रमाण के रूप में।
5: तो का उन पर परिवार के सारे लोगों की फोटो लगाकर सरकारी अफसर से सील लगवानी पड़ेगी है?
4: अरे नहीं काका, इन मामलों में घर का मुखिया जिसकी फोटो लगी है परिवार के लोगों की पहचान देगा।
1: कौनों के पास कोई भी कागज नहीं हुई है तो?
0: अरे बावले, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: हमारी बहू के 8 दिन पहले जज की हुई है, अब जो बच्चा है वो का पहचान और पति का कागज लेके पैदा होगा भैया। अरे हमने खुद देखा है हमारे भतीजे के हाथ में कोनो कागज नहीं है तो।
3: अरे भैया हमारे दो भाई सोई काम की तलाश में शहर गए हैं, और ये जो हमारे गांव के बाहर बंजारे हैं ये तंबू लगा के बैठे हैं, हैं? तो उन सबका कैसे बनेगा
4: भाई? अधिकारी और सरकार सबकी सोच कर चलते हैं, क्या समझे?
2: आधार प्रोजेक्ट में एक अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार, जिनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं हो, ऐसे नागरिकों के लिए इंट्रोड्यूसर यानी पहचान देने वाला अधिकृत करता है।
4: हाँ, इंट्रोड्यूसर यानी वो आदमी जिसके पास यूनिक नंबर हो यानी यूआईडी हो और जिसे रजिस्ट्रार ने अधिकृत किया हो।
2: वो कोई भी हो सकता है, जैसे एमपी, एमएलए, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी, शिक्षक, डाकिया, डॉक्टर, आंगनवाड़ी, वो आंगनवाड़ी वाली है ना बहन जी, या आशा कार्यकर्ता, एनजीओ का प्रमुख भी हो सकता है। इनमें से किसी को भी रजिस्ट्रार इंट्रोड्यूसर यानी पहचान करता बना सकता है।
1: ये तो हो गई भैया पहचान और पते की बात। हमारी दादी कोई लो जो नकाबी स्कूल गई और जिनकी नाई तो कोई जन्म पत्री आए।
4: उनकी उम्र बता दो, उतने साल घटाकर जन्म का साल पता लगा।

अब तक आप जमुनिया को तो अच्छी तरह जान और समझ ही गए हैं, इसलिए ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि जमुनिया आधार योजना का लाभ फतेहपुर ग्राम को दिलवाने के लिए जुट जाएगी। कमी न विकास के प्रयासों की है, न जमुनिया के उत्साह की। अगले एपिसोड में सुनेंगे और क्या नया लेकर आती है जमुनिया।

संग्रहालय से में अभी आपने सुना जमुनिया की 27वीं कड़ी का प्रसारण। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभारंभ के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार सभी के जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाया करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा है कि साहित्य और पत्रकारिता से लेकर सिनेमा और टेलीविजन तक हिंदी लाखों लोगों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बन गई है। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत शाम को शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल सहित कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत की। श्रोताओं, सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का वास हो।

श्रोताओं जरा सोचिए, हमारे शरीर में एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जो दिन रात हमें संक्रमण और बीमारियों से बचाने का काम करती है। लेकिन अगर यही सुरक्षा व्यवस्था गलती से अपने ही शरीर के स्वस्थ हिस्सों को दुश्मन समझ बैठे तो यहीं से शुरू होती है ऑटो इम्यून बीमारियों की कहानी। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक तत्वों से बचाने का काम करती है। लेकिन जब यही प्रतिरक्षा प्रणाली किसी कारण से शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और ऊतकों को ही बाहरी समझकर हानिकारक उन पर हमला करने लगती है तो इस स्थिति को ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाता है। ऑटो इम्यून बीमारियाँ शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्रभावित कर सकती हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, टाइप 1 डायबिटीज, हाशिमोटो, थायरोडाइटिस, सोराइसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं। इन बीमारियों के पीछे हेरिडिटरी रीजंस के साथ साथ इन्फेक्शंस, एनवायरमेंटल चेंज और लाइफस्टाइल भी रीजन हो सकते हैं। हालांकि ऑटो इम्यून डिजीज को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित उपाय नहीं है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर जोखिम को कम करना और बीमारी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके लिए बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस पर कंट्रोल और स्मोकिंग से दूरी और हेल्दी वेट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही यदि शरीर में लंबे समय तक रहने वाले एबनॉर्मल सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। समय पर पहचान और उचित उपचार से कई ऑटो इम्यून डिजीजेस को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। और आइए सुनते हैं अब ये मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। कार्यक्रम में अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और समाधान विषय पर डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट अनुष्का श्रीवास्तव से मनीष गजभिये की ये बातचीत।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजभिये। श्रोताओं, हमारे शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए केवल पर्याप्त भोजन ही काफी नहीं है। भोजन में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में मिलना भी उतना ही जरूरी है। इनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं को कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। तो आखिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी क्यों होती है, इनके प्रमुख लक्षण क्या है, बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने रोजमर्रा के भोजन में छोटे छोटे बदलाव करके हम इस कमी से कैसे बच सकते हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है अनुष्का श्रीवास्तव। अनुष्का जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: अनुष्का जी, सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारे शरीर में इनकी क्या भूमिका होती है।
2: जी ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर समझना है तो अगर उसके शब्द में ही हम ध्यान दें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। तो हमारे शरीर में जो छोटे मात्रा में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनको हम कह सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को मात्रा में बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हें मुख्य रूप से विटामिन्स और मिनरल्स से बांटा जाता है। ये शरीर की इम्यूनिटी, हड्डियों और दांतों की मजबूती, खून बनाने, मस्तिष्क के विकास, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में मदद करते हैं।
1: जी।
2: अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर में समझें तो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हमारी गाड़ी होती है कार, तो कार में हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो कार स्मूथली नहीं चल पाएगी।
1: बिल्कुल।
2: उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसी तेल का काम करते हैं जो हमारी बॉडी को स्मूथली काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और इनकी हमें आवश्यकता ज़रूरी होती है।
1: जी, बहुत उपयोगी जानकारी दी आपने। तो अब अगर हम आपसे जानना चाहें तो प्रमुख माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: जी बिल्कुल। देखा जाए तो विटामिन्स और मिनरल्स में बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन अगर प्रमुख माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूँ तो आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, जिंक, आयोडीन, विटामिन डी, विटामिन ए, फोलेट यानी विटामिन B9 और विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए।
1: और अगर मान के चले कि इनकी अगर कमी होती है तो क्या लक्षण हो सकते हैं इनकी कमी के?
2: जी बिल्कुल।

0: देखा जाए आयरन की कमी से सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है उसको हम खून की कमज़ोरी कहते हैं, यानी
1: जी
0: एनीमिक
1: एनीमिक
0: एनीमिया आजकल हर किसी में होता है, जिसके लिए हम आयरन की ही उनको टैबलेट्स या डोसेज दिए जाते हैं जो इनको बहुत मात्रा में कमी होती है। और वहीं अगर मैं बात करूँ आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से एक गोइटर नामक बीमारी हो जाती है जिसे हिंदी में घेंगा भी कहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हमको इन विटामिन और मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। ये अगर हम अपने भोजन में नहीं शामिल करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि इनकी कमी से इतनी बीमारी जो होती है जो हमेशा साथ चलती है और आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है,
1: जी
0: जिसके वजह से हमें हमारे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
1: जी बहुत ही उपयोगी जानकारी। और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी का असर मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर भी पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को कैलोरीज ईंधन देती हैं। उसी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी मशीनरी को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल
0: और भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। इसको विशेष रूप से अगर हम देखा जाए तो इसको आयरन डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बहुत आम है, जो अगर हम सही कर सकते हैं तो वो इनके सेवन से ही कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: तो अब जैसे बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो होती है, उसमें उन्हें किस प्रकार की समस्याएं उनके लिए उत्पन्न होती है या उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
0: अगर आयरन की कमी हो रही है तो बच्चों में आप थकान देख सकते हैं, कमज़ोरी देख सकते हैं, उनको चक्कर आ सकते हैं, सांस उनकी फूल सकती है, उनकी कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है, उनका त्वचा का पीलापन पड़ जाता है या उनका पेल फेस हो जाता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल यंगस्टर्स के बाल सफ़ेद होने लगे हैं उम्र से पहले ही, तो ये सभी आयरन की कमी के वजह से हो रहा है। वहीं कुछ बच्चों में कैल्शियम की कमी के वजह से आप उनमें रिकेट्स जैसी बीमारी देख सकते हैं, उनके हड्डियों की कमज़ोरी देख सकते हैं। वहीं विटामिन B12 की कमी के वजह से बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा नहीं है।
1: जी
0: और आजकल तो मैं ये समझती हूँ कि हम AI के जनरेशन में हैं, AI की वजह से जितना उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी है वो तो भूल ही रहे हैं, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से उनकी और ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का जी, अब जैसे हम बात करें, महिलाओं विशेषकर किशोरी और गर्भवती महिलाओं में यह कमी क्यों अधिक देखी जाती है?
0: देखिए, महिलाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का रिस्क कई कारणों से बढ़ सकता है। किशोरियों में ग्रोथ के साथ साथ मेंस्ट्रुएशन के कारण आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। कई बार भोजन पर्याप्त मात्रा में ना लेना या रिस्ट्रिक्टिव डाइटिंग भी एक समस्या बन जाती है। प्रेगनेंसी में माँ के शरीर को अपने साथ साथ डेवलपिंग बेबी की ज़रूरतें भी पूरी करनी होती
1: बिल्कुल
0: हैं, इसीलिए आयरन, फोलेट, आयोडीन, कैल्शियम और अन्य न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बढ़ जाती है हमारे शरीर में। इसीलिए ही एडोलेसेंस से ही अगर अच्छी न्यूट्रिशन मिल रहा है और उसकी आदतें बन रही हैं तो प्रेगनेंसी में अप्रोप्रिएट मेडिकल और न्यूट्रिशन गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: जी और जैसे कहते हैं कि संतुलित आहार ही सेहत की सबसे बड़ी कुंजी है, तो संतुलित आहार के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति की जा सकती है, और की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है?
0: बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी डाइट में वैरायटी रखें। हमारी खाने की प्लेट में अगर हमें वैरायटी दिखेगी तो हम नेचुरली हमें अच्छा लगेगा खाने में। जैसे कि हमारी प्लेट में अलग अलग फूड ग्रुप्स होने चाहिए, 5 तरीके के फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से आप सीरियल्स एंड मिलेट्स यानी अनाज अनाज और मिलेट्स, पल्सेस एंड बीन्स जो कि है दाल और लेग्यूम्स, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, रंग बिरंगी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स और नट्स और सीड्स, और इसके साथ ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अगर ये सभी हम अपनी थाली में सजाकर खाते हैं सही मात्रा में, सही कॉम्पोजिशन में, तो हमको वैरायटी के साथ साथ ये सारी ही न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं और एक बैलेंस्ड डाइट हमें मिल जाती है।
1: जी।
0: सो साथ ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी

0: में खाना तो खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप लोगों से पूछे कि वो दिन में क्या एक भी फ्रूट खाते हैं, तो उन लोगों का शायद जवाब होता है कि हम तो जूस पी लेते हैं, लेकिन कोई फ्रूट नहीं लेता है। जबकि एक्चुअल हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से डायरेक्टली हमें मिलते हैं। तो हमें अपने खाने के साथ हमारी प्लेट में वैरायटी रखना चाहिए। और दूसरा, हर दिन आपको फ्रूट्स लेना ही है, ये सबसे मैंडेटरी चीज है।
1: जी जी जी। और जैसे कि आयरन और कैल्शियम की बात करें, तो उसके लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं?
0: आयरन के लिए दालें, चना, राजमा, बीन्स, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, नट्स और कुछ एनिमल फूड बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी रिच फूड्स भी लेने होते हैं। जैसे कि आंवला ले सकते हैं हम, अमरूद खा सकते हैं, नींबू, संतरा या टमाटर शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम के लिए हम दूध से बनी चीज़ें या दूध ले सकते हैं, जैसे कि दही, पनीर, रागी, सेसमे यानी तिल, कुछ लीफी ग्रीन्स ले सकते हैं, और सोय और कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स बहुत अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी के साथ हमें ये भी देखना है कि हम रेगुलरिटी और ओवरऑल डाइट पैटर्न भी महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं कि नहीं।
1: जी जी जी जी जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी का पता लगाने के लिए क्या किसी तरह की कोई जांचें वगैरह होती है, किसी तरह की कोई जांचें कराई जा सकती है?
0: देखिए, ये व्यक्ति के सिम्टम्स और सस्पेक्टेड डिफिशियंसी पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए मान लें सीबीसी और हीमोग्लोबिन, एनीमिया इनकी स्क्रीनिंग के लिए उपयोगी होते हैं। और आयरन डिफिशियंसी के असेसमेंट में डॉक्टर सीरम फेरिटिन और अन्य आयरन स्टडीज भी देख सकते हैं। विटामिन B12 और फोलेट के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। और विटामिन डी के लिए आमतौर पर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी यानी 25 OHD टेस्ट किया जाता है। कैल्शियम असेसमेंट में सीरियम कैल्शियम देखा जा सकता है, लेकिन कैल्शियम स्टेटस को केवल एक ब्लड वैल्यू से हमेशा पूरी तरह समझना सही नहीं होता है। इसलिए बिना ज़रूरत के बहुत सारे टेस्ट कराने के बजाय डॉक्टर या किसी डाइटिशियन की क्लिनिकल असेसमेंट के अनुसार ही टारगेटेड टेस्टिंग बेहतर अप्रोच है।
1: जी जी जी। अब अनुष्का जी, परिवार के दैनिक भोजन की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या छोटे बदलाव करके हम इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते?
0: जी देखिए, बहुत बड़े बदलाव करने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटे चेंजेस भी कर लें तो बहुत प्रभावी हो सकते हैं। जैसे कि हर दिन कम से कम 1-2 सर्विंग हरी या रंगीन सब्जियों की रखें। दाल, चना, राजमा या अन्य तरीके के जो लेग्यूम्स हैं उनको हम नियमित कर सकते हैं हमारे भोजन में। सीजनल फ्रूट्स को हम शामिल कर सकते हैं हमारी डाइट में, और नट्स और सीड्स को छोटी मात्रा में डेली डाइट का हिस्सा बना लें। आयरन रिच मील्स के साथ हम विटामिन सी रिच फूड्स भी ले सकते हैं, और दूध या दही या कैल्शियम रिच अल्टरनेटिव्स को हम नियमित रख सकते हैं। हमारी वेजिटेरियन डाइट में B12 के रिलायबल सोर्स पर हम विशेष ध्यान दे सकते हैं, और विटामिन B12 के बहुत सारे लोग एक मल्टी विटामिन के तौर पर टैबलेट लेते हैं, पर मेरा मानना यह है कि हम अगर रोज दही खा लें तो दही में ही इतना विटामिन B12 होता है कि हमें फिर टैबलेट पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर हम हर दिन नियमित रूप से दही ले लें तो वो हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हमें उससे B12 भी अच्छा खासा मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि घर के जो ट्रेडिशनल फूड्स है उसको हम सही कॉम्बिनेशन और वेराइटी के साथ अपनी प्लेट में लेकर आ सकते हैं। और ये हमारी प्लेट का अगर चेंज हो गया तो मुझे लगता है हम लोग अच्छा एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं।
1: जी, कार्यक्रम के आखिर में अनुष्का जी, चलते चलते श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि वे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से बच सके?
0: स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पेट भरना पर्याप्त नहीं है, शरीर को सही पोषण देना भी जरूरी है। हमारी थाली जितनी कलरफुल और डाइवर्स होगी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। थकान, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना या कॉन्सेंट्रेशन की समस्या को हमेशा काम का स्ट्रेस या कम नींद समझकर इग्नोर ना करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, बिना जांच या प्रोफेशनल एडवाइस के सप्लीमेंट्स लेना शुरू ना करें। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किसी एक्सपर्ट से पहले अपना डाइट चार्ट बनवाएं, अपने प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएं या टेस्ट जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो करवाएं और उसी के बाद वो डाइट फॉलो करें, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत और उसकी सही मात्रा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। बैलेंस ला सकते हैं न्यूट्रिशन में ये सारे बदलाव कर कर।
1: जी निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे न सिर्फ हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे बल्कि हम यही उम्मीद भी करते हैं कि वह अपने खाने में उन पोषक तत्वों को शामिल करेंगे जिसकी कि वाकई में एक स्वस्थ शरीर को आवश्यकता होती है। अनुष्का जी आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आपने सुनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी और समाधान विषय पर डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशनिस्ट अनुष्का श्रीवास्तव से मनीष कछभिए की ये बातचीत। आशा है आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और आइए श्रोताओं आनंद लीजिए अब इस मधुर गीत का।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का, और आज हम बात करेंगे बायोसेंसिंग फैब्रिक्स के बारे में। बायोसेंसिंग फैब्रिक्स ऐसे स्मार्ट कपड़े होते हैं जिनमें सेंसर या बायोसेंसर टेक्नोलॉजी को कपड़ों के धागों में शामिल किया जाता है। ये कपड़े शरीर से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स को रेगुलरली मेजर करते हैं। उनमें से कुछ हैं हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग रेट, बॉडी टेम्परेचर, पसीने में मौजूद केमिकल, ग्लूकोज, लैक्टेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी मूवमेंट्स और बॉडी की स्पीड। तो श्रोताओं, आप सभी को गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त पूर्णिमा मिनोचा को। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य दर्पण, इस कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
2: मुंशी प्रेमचंद ने कहा, जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ।

0: मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
3: सुनिए हिंदी साहित्य से जुड़ा हमारा लोकप्रिय साप्ताहिक कार्यक्रम शब्द सागर, जिसमें आप सुनेंगे काव्य पाठ, कहानी पाठ, साक्षात्कार और एक विषय विशेष पर केंद्रित वार्ताएं। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम शब्द सागर प्रत्येक मंगलवार सुबह 9:30 बजे।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष, यादों का सुनहरा सफर, FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती भोपाल से जरूर सुनिए 7 जून शाम 6 बजे विशेष।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 होने जा रहे हैं। ये समय है कार्यक्रम लोक संगीत का, और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं डॉक्टर सुरेश तिवारी। इनसे आप सुनेंगे कुछ बुंदेली गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस परब गीत से।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुने डॉक्टर सुरेश तिवारी के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। अब सुगम संगीत के कार्यक्रम का समय हो चुका है और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संजय शर्मा के गाए हुए कुछ भजन। आपके साथ संगत कलाकार हैं, तबले पर हैं मोहम्मद समी और वायलिन पर लहरा दे रहे हैं पंडित महेश मलिक। कार्यक्रम का आरंभ इस भजन से। रचना है ब्रह्मानंद जी की।

0: ये रचना आप सुन रहे हैं कबीर की, स्वर संजय शर्मा का। और इसी भजन के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आपके साथ तबला संगतकार थे मोहम्मद समी और वायलिन पर थे पंडित महेश मलिक। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:57 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: हिंदी वो धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: मुंशी प्रेमचंद ने कहा, जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
4: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
3: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
4: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
3: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
4: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
3: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
4: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
3: आओ मिलकर करें प्रयास,
4: शुद्ध पानी हो सबके पास।
5: ये प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2 बज चुके हैं, आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म की ये भक्ति वंदना। सुखविंदर सिंह ने इसे गाया था, प्रशांत इंगोले के शब्द थे और धुन थी शेष पुराणिक की।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया हुआ ये गीत। इंदिवर के शब्द हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र।

0: मुकेश के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाना सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी और अन्य सभी भाषाएं तकनीकी विकास के सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा समय में AI भारतीय भाषाओं के आसान अनुवाद के अवसर दे रहा है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। इस अवसर पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत उज्जैन में 17 सितंबर को शाम 7 बजे भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। उधर मैहर में जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सोहाने ने पत्रकार वार्ता के जरिए सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता सहित धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के व्यापक आयोजन किए जाएंगे। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व आज गणेश चतुर्थी के साथ प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर प्रदेश में भी गणेशोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया। आगरमालवा जिले में घरों, दफ्तरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही गणेश उत्सव शुरू हो गया है। जिले में अनेक स्थानों पर पांडाल बनाकर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के गुना जिले में भी 100 से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित होंगी। वहीं पन्ना में गणेश चतुर्थी पर विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला की प्रतिमा का टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर अनावरण हुआ। आज हरतालिका तीज पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार के

0: सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। वहीं नव युवतियां भी अच्छे वर और अच्छे वर की कामना के लिए तीज पर्व मनाया करते हैं। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हरतालिका तीज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल से वर्चुअली गुना में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल पन्ना में आयोजित एक कार्यक्रम में किलकला नदी में धर्मसागर तालाब के पुनर्निर्माण कार्यक्रम का लोकार्पण किया और कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पिछले 10 दिनों में 112 प्रकरणों में ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
3: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की।

0: उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था, जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अनुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 पान अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
4: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया

0: कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृह मंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश का जो पहला गीत हम पेश कर रहे हैं उसे सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। ध्रुव कुमार, गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुष पुरी ने इस गीत को सुनना चाहा है। वाशिम महाराष्ट्र से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, जुनेद, अलीना, आयात और मुआज ने ये ख़त लिख भेजा है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला नगमा ये रहा।

ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, फिल्म का नाम था दोस्ताना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई थी और बोल थे आनंद बख्शी के। और अब हम आपको कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश, जिसे लिख भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है ज़िला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहद से ये चिट्ठी लिख भेजे हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज़ बिटिया रोज़मीन और तैमूर तड़वी ने। साथ में हैं रीना मुशर्रफ, रोज़ूबाई और रानी बाबू, साथ में है इनका पूरा परिवार।

मुकेश का गाया हुआ ये गीत हमने लिया था तीसरी कसम फिल्म से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।

ये मीठा सा गीत था, हेमलता का गाया हुआ, साथ में कुछ सखियां थीं। संगीत और गीत लिखा था रविंद्र जैन ने, फिल्म का नाम नदिया के पार। और इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और एकांश गवाणकर ने। बदलापुर मुंबई से ये अगला खत आया है सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता और अर्जुन गवाणकर टुक टुक का। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये खत भेजा है इन दोस्तों ने, वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी ने। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। ये हैं धामणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती संदेश आदेश, और साथ में हैं किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे। पालदा नाका इंदौर से अगला खत लिख भेजा है हमारी नियमित श्रोता ने। ये हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। इन सभी दोस्तों ने सुनना चाहा है आराधना फिल्म का ये गीत।

या राधा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। सचिन देव वर्मन का गाया हुआ, संगीत भी उन्हीं का है, बोल हैं आनंद बख्शी के। और आराधना फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। ये हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शुएब, सायमा और राउफ भाई, साथ में है शाहिद भाई, मुस्तफा खान और आफिया खान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। गांधीबाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने भी इस गीत के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं आपकी कसम फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने इसे गाया है। आनंद बख्शी के शब्द हैं और संगीत है आर डी वर्मन का। सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर राजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और विपिन गुप्ता। साथ में हैं सुनील जैन, पवन यादव, अरुण कन्होजिया, लालू, सोना, मोना, सौम्या और इनके मम्मी पापा। और इन्हीं सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुन रहे हैं ये नगमा। और इसी गीत के साथ अब हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को देते हैं यहीं पर विराम। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 होने जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणाम उन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। आज से गणेश उत्सव शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।

0: उन्होंने कहा है कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभारंभ के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार सभी के जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाया करता है। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत शाम को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। मीडियम वेव पर आप हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। कार्यक्रम आजकल का वक्त रहेगा 6:40 और प्रादेशिक समाचार दर्शन का प्रसारण किया जाएगा आज शाम 6:45 पर। 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा और सुर्खियों में इसे सुना जा सकेगा रात्रि 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से है हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रात्रि 9:30। आपकी फरमाइश पूरी की जाएंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे मुन्ने खां से राग वाचस्पति में सारंगी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर सुरेश तिवारी। इनसे आप सुनेंगे कुछ बुंदेली लोकगीत।

0: और हिना फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। 3:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत शाम को शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की है कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नई उत्साह का संचार करेगा। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 IPS और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों सहित कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम,

गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। और भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने जापान के नाकानिकी जुन्या को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब पेश है उर्दू कार्यक्रम आईना।

कदम राव पदम राव में दक्कनी अल्फाज में हिंदुस्तानी माहौल और किरदारों को पेश करके ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी माहौल व माशरत व ज़बान में भी मेयारी शायरी की जा सकती है। दक्कन के दीगर शोरा में शाह मीराजी शमसुल शाह बुरहानुद्दीन जानम अली आदिल शाह शाही नुसरती हाशमी गवासी निशाती मुल्ला वजही और उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर गोलकुंडा के बादशाह कुली कुतुब शाह और वली दक्कनी वगैरह ने हिंदू मुस्लिम रवायात व तलमीहात से काम लेकर फारसी उर्दू की बहरों के साथ साथ हिंदी शायरी की बहरों और लफ्ज़ियात में भी शेर कहकर हिंदुस्तानियत के तसव्वुर को फ़रोग़ अता किया। वली दक्कनी का दीवान जब दिल्ली पहुँचा तो उर्दू के दिल्ली शोरा फ़ायज़ हातिम आबरू मिर्ज़ा मज़र जाने जाना वगैरह वली के कलाम से मुतासर होकर वली के रंग में शेर कहने लगे। इन दिल्ली शोरा के बाद दिल्ली में ही मीर तकी मीर मोहम्मद रफ़ी सौदा ख्वाजा मीर दर्द नज़ीर अकबर आबादी मुसफ़ी इंशाअल्लाह खां इंशा मीर हसन और बहादुर शाह जफ़र वगैरह ने अपने कलाम में हिंदुस्तानी कल्चर तीज त्यौहारों रस्म व रिवाज मौसमों मेलों ठेलों बाज़ारों जानवरों खेल कूद और सकाफती तफरी मशागिल वगैरह के ज़िक्र में हिंदुस्तानी अल्फाज व मुहावरात और इस्तिलाहात को इस्तेमाल करके अपनी शायरी में ऐसी मिठास घुलावट रचाव मौसीकियत सादगी और सलासत पैदा कर दी कि वो उनकी और उनके कलाम की पहचान बन गई। अमीर खुसरो फारसी के शायर थे लेकिन हिंदुस्तानी मौजूआत व अनासिर के हामिल उनकी शायरी को हिंदवी कलाम से मौसूम किया गया है। नज़ीर अकबर आबादी हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तानी ज़बान के सबसे बड़े अलमबरदार थे कि जिन्होंने अपने कलाम में अपने अहद के आगरे के अवाम की ज़िंदगी से मुतालिक मौजूआत को उर्दू हिंदी संस्कृत के अलावा ब्रज भाषा और अवधी के अल्फाज इस्तेमाल करके खालिस अवामी और खालिस हिंदुस्तानी शायर होने की पहचान कायम की जिसकी वजह से उन्हें उर्दू शायरी का कालिदास कहा जाता है। नज़ीर की नज़मों में आदमी नामा रोटी नामा मुफलिसी बंजारा नामा होली दिवाली शबरात बलदेव जी का मेला और कन्हैया जी का जन्म बरसात की बहारें वगैरह में हिंदुस्तानियत का तसव्वुर नुमाया है। इंशाअल्लाह खां इंशा शायर ही नहीं अदीब भी थे। उनकी तसनीफ शुदा दास्तान रानी कैतकी की कहानी खालिस हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी गई है जिसके सारे किरदार हिंदुस्तानी हैं और एक लफ्ज़ भी इसमें किसी गैर हिंदुस्तानी ज़बान का शामिल नहीं है। बहादुर शाह जफर ने अपनी शायरी में भी और इसके अलावा ब्रज भाषा और पंजाबी के अशार में भी हिंदुस्तानियत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। मिर्ज़ा गालिब के कलाम में अगरचे फ़ारसी ज़बान के असरात गालिब हैं लेकिन उन्होंने अपनी बाज़ गज़लियात क़िताआत और क़साइद और ख़ुतूत में सादा हिंदुस्तानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और हिंदुस्तान की पहली तहरीक आज़ादी यानी 1857 ईस्वी के आंदोलन और शहर दिल्ली की तबाही और बर्बादी के हालात भी पुरसोज अंदाज में बयान किए हैं। मिर्ज़ा गालिब का बड़ा कारनामा शहर बनारस से मुतालिक उनकी फ़ारसी मसनवी चरागे देर है कि जिसमें उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी की रवायात को मलहूज रखते हुए उसकी तारीफ व तौसीफ़ बयान करते हुए काशी को हिंदुओं का काबा कहा है। कलकत्ता शहर से मुतालिक उनकी गज़ल में भी हिंदुस्तानी मनाजर और अकदार को फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। अवध के बादशाह वाजिद अली शाह का ड्रामा राधा कन्हैया अमानत लखनवी की इंदर सभा पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलदार नसीम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पंडित ब्रज नारायण चकबस लखनवी अल्लामा इकबाल सुरूर जहान आबादी जगत मोहनलाल रवां रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी हफीज़ जालंदरी अख्तर शीरानी अमजद हैदराबादी जानिसार अख्तर सरदार जाफरी इब्ने इंशा नज़ीर बनारसी देवेंद्र सत्यार्थी आरजू लखनवी पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी जमीलुद्दीन आली निदा फाजली जफ़र गोरखपुरी ज़ुबैर रिजवी भगवान दास एजाज शाहिद मीर और कौसर सिद्दीकी वगैरह ने अपनी गज़लों नज़मों रुबाइयों दोहों और गीतों में हिंदुस्तानी माहौल तहजीबी अकदार समाजी संस्कार खेत खलियान नदियाँ पर्वत मैदान घर आंगन चौपाल शहर देहात मजदूर किसान कौमी एकता और हुब्बुल वतनी का बखान करके हिंदुस्तानियत के तसव्वुर को
تاریخی اور ادبی حیثیت

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 4:30 होने को हैं। ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जमुनिया। आज इसकी 27वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

इंसान अगर ठान ले तो असंभव नजर आने वाले काम को भी संभव करके दिखा सकता है। जमुनिया ग्राम फतेहपुर की पहली महिला सरपंच ने यही कर दिखाया, जिसकी कहानी आप अब तक सुनते आ रहे हैं। कभी गांव के एक गरीब और उपेक्षित परिवार की अशक्त और अशिक्षित बहू आज फतेहपुर ग्राम पंचायत की सशक्त और सुशिक्षित सरपंच है, जिसका सम्मान सारा गांव करता है। साहस, दृढ़ निश्चय, आंखों में गांव के विकास का सपना और दिल में राह में आने वाली कठिनाइयों से जूझने का जज्बा, यही तो पूंजी है जमुनिया की। इसी पूंजी को लेकर जमुनिया ने ग्राम विकास की बहुत सी सरकारी योजनाओं को गांव वालों के सहयोग से अपने गांव में साकार कर दिखाया। कभी जो एक पिछड़ा हुआ गांव हुआ करता था, आज वही फतेहपुर ग्राम बहुत सी आधारभूत संरचना और सुविधाओं से संपन्न गांव है, जिसकी पंचायत को जिले की पंचायतों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली पंचायत घोषित किया गया है। गांव की सरपंच जमुनिया को भी 10,000 रुपए नगद, शॉल और श्रीफल से कृषि मंत्री ने सम्मानित किया। इस उपलब्धि से प्रसन्न और उत्साहित फतेहपुर के गांववासियों ने भी अपने प्रिय सरपंच जमुनिया का सम्मान 15,000 रुपए नगद से किया। जमुनिया ने पूरे 25,000 रुपए ग्राम सभा को दान कर दिए। जमुनिया उसके परिवार की उन्नति के मामले में भी सजग थी। उसका बेटा तेजस आज कलेक्टर और बेटी रूपस डॉक्टर है। बेटा बेटी दोनों माँ के सम्मान से गौरवान्वित और प्रसन्न हैं। अब आगे

0: रामगढ़ वाली बस का टाइम हो रहा भैया। काय भैया हैं, इतनी मस्ती में किते जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहे हैं भैया।
0: मंदिर काय के लाने?
1: आटा पिसाने
0: है?
1: अरे भैया, सुहन काका ने मंदिर में गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा है, सोई जा रहे हैं मंदिर।
0: ठहर भैया, हम भी चलते हैं, धर्म कर्म का काम है। ए छोटू, ए जरा दुकान संभालियो, हैं हम अब याद हैं।
1: जल्दी करो भैया, आरती का टाइम हो रहा है।
0: हो
1: चलो बैठ जाओ। चलो भैया
0: चल।
1: लो उतरो भैया हमारे हेलीकॉप्टर से। लो सुन, आरती भी चालू हो गई।
0: हो भैया।

0: ऐसे हमारी विनती है भैया कि प्रसाद जरूर लेकर जाना।
1: कक्का, तुमने तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम कर डाला।
0: अरे हम कौन होते हैं भैया करने वाले, सब ऊपर वाला करता है।
1: सो तो ठीक कही आपने। जमुनिया भौजाई भी आ गई।
2: पायला की कक्का।
0: जमुनिया बेटी, खुश रहो बिटिया, खूब काम करो, खूब नाम करो। ये लो प्रसाद।
2: खाओ कक्का, बस ऐसो ही आपका आशीर्वाद बनो रहे कक्का। कक्का, शाम को पंचायत भवन के ओटले पर आए जे हैं, तब जानेंगे कैसी रही आपकी तीर्थ यात्रा।

0: की फसल बो कि पानी कम लगे। और बताओ सोहन कक्का, कैसी रही तीर्थ यात्रा?
1: अरे जामुनिया बिटिया आ जाए तो शुरू करें भैया, है आन दो बाय।
2: हाँ।
3: आ गई कक्का, जमुनिया आपकी।
1: हाँ भाई, हाँ तो भाई लोग शुरू करें।
2: भैया शुरू करो भैया।
1: तो का है भैया कि जिंदगी में पहली बार इतनी दूर की यात्रा पर गए, काय से कि पैसा कभी राय नहीं हमारे पास, तो जाते कैसे?
4: अब तो हुआ है ना कक्का,
1: आओ
4: तो छोड़ो अफसोस और शुरू करो तीरथ की कहानी।
1: हाँ ए भैया इतना सुनो पहले। हाँ तो अब का भाव कि जहाँ से पहले हम गए काम मथुरा जी, और बा के बाद लगे हाथ वृंदावन, और गोकुल भी हो लिए, और साफ फिर हरद्वार और ऋषिकेश, और फिर बद्रीनाथ गए। अरे भैया, हमने कमला की अम्मा से कही थी कि तुम्हारे जिंदगी भर को दुख हम एक ही बार में मिटा देंगे।
0: कक्का,
1: हाँ
0: वो खाना पीना सभी जगह अलग अलग स्वाद का मिला होगा, है ना?
1: हाँ बात तो ठीक कही भैया तुमने, पर स्वाद अलग होवे से का
0: हाँ?
1: मिला बेहतरीन खाना सब जगह मिला।
0: हाँ
1: बस एक तकलीफ रही भैया।
0: वो का कक्का?
1: ठहरवे की, रेवे की, रुकवे की। हाँ
4: का कह रहे हो कक्का?
1: हाँ
4: हाँ, जगह तो होटल धर्मशाला सराय हुत है, अब पैसों भारी खर्च करनो पड़े।
2: जी तो है,
1: बात पैसा की नहीं थी बेटा।
4: तो कक्का
1: होटल धर्मशाला सराय जहाँ कमरे की बात करो तो भाई लोग पहचान पत्र की बात करें। हाओ पहचान पत्र,
0: पहचान पत्र।
1: हाओ
0: कमरा किराए लेने के लिए हद है।
3: सुरक्षा के कारणों से आजकल इन जगहों पर पहचान पत्र मांगते हैं।
1: हाओ पर ये बात हमको तो ना पता थी, सो हर जगह हाथ पैर जोड़ने पड़े ठहरने की खातिर।
5: पर बिटिया ये गरीब गुरुवा का करें, उनके पास तो कोनो पहचान पत्र नहीं होतो है।
3: इसीलिए सरकार देश के हर नागरिक के लिए उसकी पहचान के लिए 12 अंकों के नंबर वाला एक प्रोजेक्ट लेकर आई है।
4: वाह भाई, ये भला कौन सा प्रोजेक्ट है?
3: हाँ नया ही समझो, इसका नाम है आधार।
5: आधार?
1: आधार?
4: आधार?
1: तो बिटिया ये कौन सी नई बला आ गई अब?
3: ये बला नहीं है काका, बल्कि भला है हम सब के लिए, कमाल की चीज है।
5: तो सरकार सबको एक नंबर अलाट कर देगी है?
3: जो नंबर पाने के लिए अर्जी करेगा उसको।
4: अर्जी कौन लगा सकता है?
3: सभी आदमी, औरत, हाल का पैदा बच्चा, हमारा विदेश में बसा आदमी, और तो और हमारे यहाँ रहने वाले विदेशी भी, सभी अर्जी लगा सकते हैं।
6: सभी को राम राम भैया।
7: राम राम भैया।
8: राम राम। राम राम
6: भैया। जमुनिया जी, अब कहे की अर्जी लगाने की बात कर रही हैं?
1: अरे जयंत बेटा, कौनो आधार नंबर की बात कर रही है जमुनिया?
6: काका आधार तो प्रोजेक्ट का नाम है, उस नंबर को कहते हैं UID नंबर।
5: हाँ हाँ हाँ, अभी अभी सरपंच जी ने बताया था। हाँ
4: कुछ बातें सरपंच जी ने बताई, बाकी आप बता दो भैया।
6: हाँ हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं, रात के 9 बज गए हैं। सुबह की बस से मुझे सरपंच जी के साथ तहसील ऑफिस, और समय रहा तो कलेक्टर ऑफिस भी जाना है। अच्छा सभी को राम राम भैया।
7: राम राम भैया।
8: राम राम। राम राम।
6: जमुनिया, तहसीलदार साहब से मुलाकात अच्छी रही?
3: इस बार पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद नहीं थी कि राशि इतनी जल्दी स्वीकृत हो जाएगी।
6: अरे होती कैसे नहीं?
3: क्या कह रहे थे आप?
6: मैंने कहा आपके कामों से आपकी धाक बन गई है यहाँ, और आपका प्रस्ताव तो स्वीकृत होना ही था।
3: मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा काम मत कहा करिए, मैं पंचायत के लिए काम करती हूँ, इसलिए वो हम सब का किया काम है।
6: जी मैडम जी।
3: मैडम जी, वो मैडम जी क्या होता है, मैं जमुनिया ही ठीक हूँ।
6: जी जी जी, माफ कीजिए जमुनिया।

0: ये लोग ना पता नहीं कब समझेंगे कि आगे बढ़ो के नारे से देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश तो आगे बढ़ेगा काम करने से।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर कुछ लोग नारे लगाने में लगे रहे तो अच्छा है।
0: क्यों?
1: सभी काम में लग जाएं तो देश कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाएगा, है ना?

0: राम राम सरपंच जी, राम राम जैन जी।
1: राम राम भैया।
0: बहुत से लोग आएंगे आज पंचायत के दफ्तर, आप पहुंचेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर पहुंचूंगा। आप लोगों को आधार प्रोजेक्ट के बारे में जो बताना है।
1: आप थकते नहीं क्या?
2: आप थकने का मौका ही कहाँ देती हैं।

0: सरपंच जी और जयंत जी गांव लौट आए हैं तहसील से।
1: हम लोगों को भी आधार योजना की जानकारी मिल जाएगी। लो अब वो दोनों भी आ गए।
2: सबको नमस्कार।
3: नमस्कार भैया। राम राम।
4: हाँ तो हम आधार योजना की बात कर रहे थे। पहले आप बताइए जमुनिया जी ने आपको क्या क्या बता दिया, फिर मैं उसके आगे बताऊंगा।
1: सरपंच जी ने बताया था कि ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार हर आदमी को 12 अंकों वाला एक नंबर अलाट करती है।
5: हर एक को, यानी जो जो अर्जी लगाता है उसको। अर्जी कौन कौन लगा सकता है ये भी बताया।
6: अरे कक्का, आपको ये भी तो बताया था कि ये भला नहीं है, ये तो देश का भला है।
4: चलिए अब आगे की जानकारी आपको देते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है जो आधार का काम देखती है।
1: ये तो बड़ा भारी नाम है भैया, हम तो बोल भी ना सकत।
4: आप इसे UIDAI कह सकते हैं। हर एक की एक विशिष्ट पहचान होती है, जैसे नाम, पति या पिता का नाम, घर का पता, उम्र आदि आदि होती है ना।
1: हाँ, होती है भैया।
4: और जो लोग दस्तखत नहीं कर सकते उनसे अंगूठा लगवाया जाता है ना? जानते हैं क्यों?
1: अरे क्योंकि हर एक के अंगूठे का निशान अलग होता है भैया।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर एक के केवल अंगूठे के नहीं बल्कि दसों उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों का रंग भी अलग होता है।
5: अरे तो भैया अंगूठे का निशान तो स्याही लगा कर लेते हैं, पर आंखों की पुतलियों के रंग के निशान
4: स्याही से नहीं मशीन की मदद से लेते हैं। हाँ उंगलियों के निशान भी मशीन की मदद से लेते हैं।
0: भैया ये कौन लेता है और कहाँ से लेता है?
4: सरकार ने जगह जगह आधार एनरोलमेंट सेंटर खोले हैं, वहां जाकर फॉर्म भरना होता है।
0: अच्छा
1: कोई फीस लगती है का फॉर्म भरवे की?
4: अरे नहीं नहीं कोई फीस नहीं लगती।
1: अब फिर ठीक है।
2: पर फॉर्म भरने के लिए एक पहचान पत्र, घर के पते का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, और हाँ दो छोटे छोटे यानी पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी है।
5: अच्छा तो ये सारी बातें पता करके आए आप दोनों तहसील से?
2: उसके लिए कक्का तहसील दफ्तर जाने की क्या जरूरत।
4: हाँ अब तो अपने पास कंप्यूटर है, सरकार अपनी योजनाओं की सारी जानकारी फॉर्म आदि कंप्यूटर पर डाल देती है ताकि लोगों को भटकना नहीं पड़े।
1: आजकल तो भैया फॉर्म भी कंप्यूटर पर भर लेवे हैं, हमने सुना जी।
4: हाँ ठीक सुना है, पर इसका फॉर्म भरने एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होता है क्योंकि वहां वो आपकी दसों उंगलियों और पुतलियों के रंग का निशान मशीन से लेते हैं।
6: अच्छा ये पहचान और पते के लिए प्रमाण पत्र के लिए क्या ले जाना होगा?
2: पहचान के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट और सरकारी पहचान पत्र ले जा सकते हैं। सरकार पहचान के लिए थोड़े बहुत नहीं 18 पहचान पत्र स्वीकार करती है।
5: हमारे कने फोटो लगी बैंक खाते की पासबुक है। हाँ
4: हाँ वो भी पहचान के साथ पते के प्रमाण पत्र के रूप में भी स्वीकार की जाती है। पते के प्रमाण पत्र के लिए पानी, बिजली और टेलीफोन के बिल भी दे सकते हैं।
2: नरेगा कार्ड और राशन कार्ड भी चलता है पहचान और पते के प्रमाण के रूप में।
5: तो का उन पर परिवार के सारे लोगों की फोटो लगाकर सरकारी अफसर से सील लगवानी पड़ेगी है?
4: अरे नहीं काका, इन मामलों में घर का मुखिया जिसकी फोटो लगी है परिवार के लोगों की पहचान देगा।
1: कौनों के पास कोई भी कागज नहीं हुई है तो?
0: अरे बावले ऐसा कैसे हो सकता है?
1: हमारी बहू के 8 दिन पहले जज की हुई है, अब जो बच्चा है वो का पहचान और पति का कागज लेके पैदा होगा भैया। अरे हमने खुद देखा है हमारे भतीजे के हाथ में कोनो कागज नहीं है तो।
6: अरे भैया हमारे दो भाई सोई काम की तलाश में शहर गए हैं, और ये जो हमारे गांव के बाहर बंजारे हैं ये तंबू लगा के बैठे हैं, हैं? तो उन सबका कैसे बनेगा
4: भाई? अधिकारी और सरकार सबकी सोच कर चलते हैं, क्या समझे?
2: आधार प्रोजेक्ट में एक अधिकारी होता है, रजिस्ट्रार, जिनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं हो, ऐसे नागरिकों के लिए इंट्रोड्यूसर यानी पहचान देने वाला अधिकृत करता है।
4: हाँ, इंट्रोड्यूसर यानी वो आदमी जिसके पास यूनिक नंबर हो यानी यूआईडी हो और जिसे रजिस्ट्रार ने अधिकृत किया हो।
2: वो कोई भी हो सकता है, जैसे एमपी, एमएलए, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी, शिक्षक, डाकिया, डॉक्टर, आंगनवाड़ी, वो आंगनवाड़ी वाली है ना बहन जी, या आशा कार्यकर्ता, एनजीओ का प्रमुख भी हो सकता है। इनमें से किसी को भी रजिस्ट्रार इंट्रोड्यूसर यानी पहचान करता बना सकता है।
1: ये तो हो गई भैया पहचान और पते की बात। हमारी दादी कोई लो जो नकाबी स्कूल गई और जिनकी नाई तो कोई जन्म पत्री आए।
4: उनकी उम्र बता दो, उतने साल घटाकर जन्म का साल पता लगा लेते हैं वो, यानी यूआईडी देने वाले।
6: जयंत भैया तनिक एक बात और हमें बता दो, वो ये कि हम जो ना लेना चाहें यूनिक नंबर तो सरकार क्या करेगी?
1: अरे तुमको ससुर जेल में डाल देगी।
5: हम कहते हैं भैया सरकार मुफ्त में काम का नंबर दे रही है तो आपको लेने में क्या तकलीफ है भैया?
0: जेल जाने से तो अच्छा है यूनिक नंबर ले लो।
4: आधार योजना का यूनिक नंबर ना लेने वाले को सरकार जेल में नहीं डालेगी। ये सरकारी कानून थोड़े ही है जो नंबर ना लेने से टूट जाएगा।
2: इसको ऐसे समझो भैया कि हमने आपके वास्ते खाना बनाया और थाली भी परोस दी, अब आप उसे न खाएं तो खाने और उसे बनाने वाले को क्या दोष?
4: ये तो एक सरकारी योजना है भैया, देश के लोगों की भलाई के लिए।
5: यानी कि जो ले उसका भला और जो ना ले उसका भी भला।
4: ना कक्का, जो लेगा उसका भला होगा। बहुत से लाभ हैं यूनिक नंबर वाले आधार कार्ड के।
1: लाभ की भली कही भैया, सारी बातें तो बता दी, अब तने की के लाभ भी बता दो।
4: पहला लाभ तो ये है कि ये किसी आदमी की सरकारी जन्म पत्री है जिसका उपयोग कई जगहों पर हो सकता है।
2: जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना, टिकट बुकिंग करवाना, बहुत सी सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में ये मददगार है। जैसे रसोई गैस की सब्सिडी लेने में।
5: हाँ भैया, आज तो आप दोनों ने बड़े काम की चीज की जानकारी दी है।
4: तो क्या विचार है, आधार का यूनिक नंबर पाने के लिए एनरोलमेंट यानी नाम लिखवाना चाहेंगे आप लोग?
0: अरे काहे नहीं चाहेंगे।
6: काहे नहीं चाहेंगे भैया, काहे नहीं चाहेंगे
5: भैया। हाँ भैया चाहेंगे, सभी चाहेंगे, पूरा गांव जानता है कि सरपंच जी और आप दोनों गांव के भले की ही सोचो हमेशा।
2: हाँ तो जैन जी, हम कल से ही जुट जाएंगे इस काम में। रात बहुत हो चुकी है और बात भी पूरी हो गई। चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और घर चलते हैं।
3: चलो भैया ने हर बंद कर यहाँ पानी
6: डालेगा। ये आजकल पानी थोड़ी कम देने लगी।
0: अरे अरे इल्ली देखी फसल में भैया?
6: देखी। अरे ये यहाँ का ज़्यादा बात मत करो, सो जाओ।
3: चार घंटे पानी के चक्कर में मैं देखी नहीं।
6: अब बताओ आप नहीं?

अब तक आप जमुनिया को तो अच्छी तरह जान और समझ ही गए हैं, इसलिए ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि जमुनिया आधार योजना का लाभ

फतेहपुर ग्राम को दिलवाने के लिए जुट जाएगी। कमी न विकास के प्रयासों की है, न जमुनिया के उत्साह की। अगले एपिसोड में सुनेंगे और क्या नया लेकर आती है जमुनिया।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 27वीं कड़ी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

शुभ संध्या, नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, वेब्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणाम उन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत शाम को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 IPS और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों सहित कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी युवा साथियों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता। दोस्तों, आज का दिन वाकई कई मायनों में विशेष है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। वे हर शुभ कार्य के आरंभ में स्मरण किए जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में नई शुरुआत, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें और हमें ज्ञान, विवेक एवं सही दिशा का आशीर्वाद दें। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काई पोचे से।

दोस्तों आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा, अमित त्रिवेदी का निर्देशित, श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाज़ में गीत शुभारंभ। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि आज का दिन काफ़ी विशेष है क्योंकि आज हम गणेश चतुर्थी के साथ साथ हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिंदी दिवस के महत्व, विशेषताओं और हमारे जीवन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। दोस्तों भाषा केवल विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती बल्कि वह किसी समाज की स्मृतियों, अनुभवों, परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली जीवंत धारा भी है। भारत जैसे बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक देश में भाषा का महत्व और भी व्यापक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक भाषा अपने साथ विशिष्ट इतिहास, लोक स्मृतियाँ और सांस्कृतिक संसार लेकर चलती हैं। हिंदी भी इस विशाल भाषाई परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और आज के समय में इसका हमारे लिए क्या महत्व है? दोस्तों हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के पीछे भारत के संविधान निर्माण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके पश्चात वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों यह दिन हमें हिंदी के संवैधानिक महत्व की याद दिलाता है और इसके प्रयोग, विकास तथा प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करता है। हिंदी दिवस केवल एक तारीख याद करने का दिन नहीं है दोस्तों, इसका संबंध हिंदी के वास्तविक इस्तेमाल और उसके प्रचार प्रसार से भी है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह जैसे आयोजन होते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार हिंदी दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि भाषा के निरंतर और प्रभावी प्रयोग का अवसर भी है। दोस्तों आज हिंदी के विकास में डिजिटल माध्यमों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट ने हिंदी के विस्तार को एक अभूतपूर्व गति दी है। अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर हिंदी लिखना पहले की तुलना में काफ़ी अधिक सहज हो गया है। दोस्तों भाषा का विकास तभी होता है जब हम

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत देवाश्री गणेशा फिल्म अग्निपथ से। स्वर थे अजय गुगावले के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था अजय अतुल का। तो दोस्तों कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया और हमारी निजता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही संदेश देखना, दिन भर की तस्वीरें साझा करना, नई जानकारी या समाचार पढ़ना, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना, इन सब के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने हमारे संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और अपने विचार व्यक्त करने के तरीकों को बहुत बदल दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर हमारी निजी जानकारी सुरक्षित है? तो दोस्तों हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं वह केवल हमारे दोस्तों या परिचितों तक सीमित नहीं रहता। कई बार हमारी जानकारी अलग अलग डिजिटल प्रणालियों में एकत्र की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर हमें पोस्ट, विज्ञापन या सुझाव दिखाए जाते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो हम कई प्रकार की जानकारी साझा करते हैं। इसमें हमारा नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, तस्वीरें, पसंद नापसंद और हमारी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। हम किन पोस्ट को पसंद करते हैं, किन वीडियो को देखते हैं, किन विषयों के बारे में जानकारी खोजते हैं और किसी वीडियो या पोस्ट को कितनी देर तक देखते हैं, इन गतिविधियों से भी हमारे बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कई प्लेटफॉर्म हमारी लोकेशन, डिवाइस और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ भी एकत्र कर सकते हैं। इन जानकारियों का उपयोग हमारी रुचि और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर एक बैग देखा, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर भी उसी प्रकार के बैग के विज्ञापन दिखाई देने लगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि आपकी ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का उपयोग विज्ञापन दिखाने के लिए किया गया हो। अब सवाल यह है कि हम अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? अधिकांश लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सेटिंग्स पाते हैं जिनसे हम खुद तय कर सकते हैं कि हमारी पोस्ट, तस्वीरें और प्रोफाइल की जानकारी कौन देख सकता है। हमें समय समय पर इन सेटिंग्स की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने अकाउंट को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए। दोस्तों हमारा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका आसानी से अनुमान ना लगाया जा सके। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना बेहतर माना जाता है। जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां दो स्तरीय सुरक्षा यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग केवल अपनी जानकारी सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि हमें दूसरों की निजता का भी सम्मान करना चाहिए। किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना साझा नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति की निजी बातचीत, फ़ोन नंबर या व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना भी उचित नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खबर सही नहीं होती। किसी पोस्ट को आगे साझा करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जाँच बहुत ज़रूरी है। इसी जागरूकता के साथ हम एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी आवाज़ में।

अब समय है आज की रोजगार सूचना का। दोस्तों, SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2536 रिक्त पदों के लिए CHSL के आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है। पात्रता और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं।

तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता को इजाजत। नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही देर बाद।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट करा

0: कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
5: सफर में
4: आपके साथ
5: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्रोताओं, पृथ्वी की परिक्रमा करने की बजाय अपने माता पिता को ही अपना संपूर्ण संसार मानकर उनकी परिक्रमा करने वाले भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हुए। इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत हम उनकी पूजा से करते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, गजवदन, लंबोदर, गजानन, विनायक आदि नामों से पुकारे जाने वाले गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को माना जाता है। इसी दिन से 10 दिन के इस उत्सव की शुरुआत होती है। जगह जगह गणेश जी की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, साज सज्जा युक्त झांकियां तैयार की जाती हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। तो इस तरह गणेश उत्सव पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, संपूर्ण भारत में उसी उत्साह, आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। तो आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में भी हम करेंगे भगवान श्री गणेश की स्तुति।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात जिसकी सूंड टेढ़ी है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश से हमारी प्रार्थना है कि वो हमारे सभी सत्कार्यों को बिना बाधा के संपन्न करें। श्रोताओं, भगवान श्री गणेश शिव और पार्वती के पुत्र हैं। शिव जगत के समस्त पापों को दूर और नष्ट करते हैं और पार्वती इस कार्य में उनकी सहायिका सर्वशक्तियुक्त देवी हैं। इसीलिए भगवान श्री गणेश में ये दोनों शक्तियां निहित हैं। इसके साथ ही भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। रिद्धि अर्थात संपत्ति और सिद्धि अर्थात यश। भगवान गणेश शुभता के कारक हैं, इसीलिए उन्हें मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश भी कहा जाता है। वो जहां होते हैं वहां मंगल ही मंगल होता है।

श्रोताओं, गण का अर्थ है प्राणी और ईश का अर्थ है भगवान, अर्थात गणेश का अर्थ हुआ प्राणी मात्र का भगवान। भगवान श्री गणेश का एक नाम विनायक भी है। विनायक का अर्थ है जिसका कोई नायक न हो, जो किसी का अनुसरण न करता हो, जिसके बुद्धि बल के आगे सभी नतमस्तक हों। भगवान गणपति बुद्धि के अधिपति हैं। एक मान्यता ये भी है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति जल से ही हुई है और जल बुद्धि का प्रतीक है। चूंकि भगवान गणेश बुद्धि के अधिपति हैं, इसलिए उनकी प्रतिमाएं नदियों की मिट्टी से बनती हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इन प्रतिमाओं को जल में ही विसर्जित भी किया जाता है। हालांकि अब तो कई तरह की प्रतिमाएं बनती हैं, लेकिन इको फ्रेंडली गणेश की बात लगातार की जा रही है, इसलिए अगर आप भगवान श्री गणेश की स्थापना कर रहे हैं अपने घर, तो मिट्टी के गणेश की ही स्थापना कीजिए।

श्रोताओं, भगवान गणेश की प्राचीन काल से ही विशिष्ट उपस्थिति है। ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी उनके जन्म की कथा, हाथी का सिर लगने की कथा, महाभारत लिखने की कथा, पृथ्वी की परिक्रमा की कथा, ऐसी अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। लोक कथाओं में भी भगवान गणेश की उपस्थिति है, इसलिए ये कह पाना कि गणेश उत्सव कब से मनाया जा रहा है बहुत कठिन है। लेकिन आज जो स्वरूप गणेश उत्सव का हमें नज़र आता है वो शुरू हुआ 1893 से। 1893 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव को बड़े स्तर पर आयोजित किया। बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े पंडाल, सामूहिक पूजन, बैंड बाजा, नृत्य, संगीत, इस तरह ये उत्सव एक भव्य रूप ले लिया। और आज से जो शुरू हो रहा है गणेश उत्सव, 10 दिनों तक इसी तरह का नज़ारा हमारे आसपास रहेगा। तो इस महाउत्सव की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया था कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। अभियंता दिवस के अवसर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कल भोपाल के

0: शभाव ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों सहित कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न

0: है दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे, गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा।

0: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
1: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
0: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
1: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
0: उनकी माँ का नाम रेनल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
1: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
0: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
0: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। बधाई हो।
3: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बधाई।
3: धन्यवाद।
1: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
4: बहुत बहुत बधाई हो।
1: अठारह में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
0: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
4: आइए मारिया जी।

0: कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? कुछ उदास लग रहे हो।
1: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
0: और बुरी?
1: जी।
0: भला वो कैसे?
1: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
0: हाँ हाँ जरूर।
1: जी
2: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
1: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क के गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
0: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है।
2: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
3: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
3: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
2: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
4: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
2: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
1: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
0: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
0: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
2: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
4: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
2: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
4: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
2: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
4: ६ मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया।

0: मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
2: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: ये था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। इसे लिखा है नक्शलैल पुरी ने, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने और फिल्म का नाम है खानदान।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं धनवान फिल्म से। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत निर्देशक हैं हृदयनाथ मंगेशकर, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आजकल।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है नशा मुक्त मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते कदम, जन भागीदारी, पुनर्वास और संकल्प से सामाजिक बदलाव। आलेख अनिल वशिष्ठ का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। युवाओं की ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा को सही दिशा देना राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति केवल व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ी एक गंभीर सामाजिक चुनौती है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करना नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति के माध्यम से नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना भी है। मध्य प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक सहभागिता, जन जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और संस्थागत समन्वय को अभियान का आधार बनाया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा नशे के विरुद्ध व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य में नशा मुक्ति के संबंध में व्यापक जन जागरूकता के लिए 213 पंजीकृत संस्थाएं कार्यरत हैं। इन संस्थाओं की भूमिका नशे के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों तक सहायता पहुंचाने की भी है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा किए गए प्रभावी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। वर्ष 2023-24 के लिए संस्थागत पुरस्कार श्रेणी में शहीद भगत सेवा समिति रीवा और व्यक्तिगत श्रेणी में राजीव तिवारी नशा मुक्ति केंद्र भोपाल को सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति अभियान का एक महत्वपूर्ण पक्ष उन लोगों को नई जिंदगी देना है जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को केवल नशे से दूर करना नहीं, बल्कि परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा से पुनः जोड़ना भी है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के 11 केंद्रीय जिलों में भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सतना, बड़वानी और उज्जैन में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में 12,000 मास्टर वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। ये स्वयंसेवक प्रदेश भर में नशे के दुष्परिणामों के प्रति आमजन को जागरूक कर रहे हैं तथा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस अभियान के दौरान युवाओं और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जागरूक करने पर जोर दिया गया है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं और विद्यार्थियों को इस अभियान से जोड़ा गया है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए QR कोड के माध्यम से लगभग 2,46,000 ऑनलाइन ई प्लेस भी कराए गए। यह अभियान आधुनिक तकनीक के उपयोग और युवाओं की व्यापक भागीदारी का उदाहरण है। नशा मुक्त समाज के निर्माण में कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जैसे विशेष अभियान संचालित कर नशे के खिलाफ जन जागरूकता का व्यापक संदेश दिया गया है। पुलिस की सहभागिता से इस अभियान को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने में मदद मिली। इसी तरह विभिन्न विभागों, पुलिस, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थाओं और नागरिक तथा समाज के बीच समन्वय स्थापित कर नशे के विरुद्ध व्यापक वातावरण तैयार किया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण और समाज में नशे के प्रति जन जागरूकता दोनों स्तरों पर प्रयास किए जाने से अभियान अधिक प्रभावी बनता है। विभागीय प्रयासों के माध्यम से नशा मुक्ति के क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ उपचार और पुनर्वास की व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नशे की चपेट में आए व्यक्ति को अपराधी या उपेक्षित व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में सहयोग देना है। मध्य प्रदेश का संदेश स्पष्ट है, नशे से दूरी स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। जन भागीदारी, जागरूकता और पुनर्वास के समन्वित प्रयासों से ही नशा मुक्त, स्वस्थ और सशक्त मध्य प्रदेश का निर्माण संभव होगा। आजकल में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के संग में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन की हमारी पहली रिपोर्ट है शहडोल से, जहां संभाग में कोयला गैसी फायर प्लांट की स्थापना को लेकर एमपीआईडीसी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा संभाग में स्टील प्लांट लगाने की दिशा में पहल भी शुरू हुई है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
1: शहडोल संभाग में कोयला गैसी फायर प्लांट की स्थापना को उस वक्त बल मिला जब मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के ईडी एपी सिंह और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी हरीश दुहन की मुलाकात हुई। दोनों अधिकारी प्लांट की स्थापना को लेकर उत्साहित हैं। शहडोल जिले के व्यवहारी उमरिया जिले के कुछ इलाकों में सिरेमिक टाइल्स उद्योग की स्थापना के लिए मिट्टी सिलिका प्रचुर मात्रा में है। कोयला गैसी फायर प्लांट की स्थापना से सिरेमिक यूनिट को चलाना 50-70% तक सस्ता पड़ेगा। एमपीआईडीसी का मानना है कि गुजरात के मोरबी की तरह यहां भी सिरेमिक इंडस्ट्री लगाना फायदेमंद होगा। कोयला गैसीफायर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को पूरी तरह जलाने की बजाय उसे ऑक्सीजन और भाप के साथ नियंत्रित परिस्थितियों में रासायनिक रूप में बदला जाता है, जिसे सीने गैस कहते हैं।

0: कहते हैं। एमपीआरडीसी की पहल पर छत्तीसगढ़ के दो प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने शहडोल संभाग में 2400 करोड़ रुपए का निवेश करने की रुचि दिखाई है। सब कुछ ठीक रहा तो शहडोल संभाग में जल्द ही स्टील प्लांट की स्थापना होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
1: हमारी दूसरी खबर है सीहोर जिले से, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ खेड़ी तकीपुर का चयन राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय पुरस्कार के लिए हुआ है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ खेड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। जिले के विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने से जिला शिक्षा विभाग ही नहीं संपूर्ण प्रदेश के लिए गौरव एवं प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दरअसल ये उपलब्धि जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के समन्वित प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस ग्रामांचल के छोटे से स्कूल में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, हरित परिसर निर्माण एवं व्यवहार परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। अब यह चयनित विद्यालय पुरस्कार प्राप्ति के साथ ही स्थापित श्रेष्ठ प्रथाएं अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत एवं अनुकरणीय मॉडल जरूर बन गया है। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सतीश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में चयनित विद्यालय को प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा तथा विद्यालय में स्वच्छ एवं हरित गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में जिले के DPC श्री RR उइके ने जानकारी देते हुए बताया कि
3: बड़े हर्ष का विषय है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय महुआ खेड़ी तकीपुर स्वच्छ रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ एवं हरित विद्यालय योजना के अंतर्गत पुरस्कार हेतु चयन हुआ है। इसमें विद्यालय के स्टाफ एवं जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ।
2: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
1: अगली खबर है सीधी से, जहां जिले में एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं दो से अधिक शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीधी संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
4: शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सीधी का नाम राष्ट्रीय पटल पर पहुंच गया। जिला प्रशासन के प्रयासों से सीधी जैसे जिले का नाम रोशन हुआ है। इसके लिए कलेक्टर विकास मिश्र ने शिक्षक दिवस पर पुरस्कृत शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के लिए आज गौरव का दिन है। जिले में एक शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं दो से अधिक शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलेक्टर विकास मिश्र ने बताया है कि कंजबार स्कूल के शिक्षक शैलेन्द्र सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मानित किया है, जबकि राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी के शिक्षकों को सम्मानित किया है। दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजबार के शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जबकि शिक्षक शैलेन्द्र सिंह ने नवाचार के जरिए कंजबार के सरकारी विद्यालय की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से विद्यालय का नामांकन 69 से बढ़कर 202, नियमित उपस्थिति 44 से बढ़कर 96% हुई और 26 ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का पुनः नामांकन कर विद्यालय को 0 ड्रॉप आउट बनाया गया। करीब 500 TLM, QR आधारित शिक्षण, FL बगीचा और पोषण वाटिका जैसे नवाचार भी उनकी उपलब्धियों में शामिल रहा है। वहीं सीधी जिले के शासकीय हाई स्कूल बभनी के शिक्षक सतीश कुमार पांडे और शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर के प्राथमिक शिक्षक राकेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य को भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। सतीश कुमार पांडे ने कोरोना काल में करीब 480 विद्यार्थियों को ऑफलाइन शिक्षा से जोड़े रखा, मोबाइल की सुविधा से वंचित बच्चों तक संसाधन पहुंचाए, बल्कि शिक्षा को बढ़ावा दिया और कमजोर विद्यार्थियों के लिए नवाचारी शिक्षण पद्धतियां अपनाई है। उनके प्रयासों से विद्यालय में ड्रॉप आउट शून्य रहा है। वही राकेश कुमार द्विवेदी ने शाला त्यागी बच्चों के पुनः नामांकन, नियमित उपस्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर से सुधारने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके नवाचारी प्रयासों से बुनियादी साक्षरता 25% से बढ़कर 85% और संख्या ज्ञान 22% से बढ़कर 82% तक पहुंचा है। देश भर के 48 चयनित शिक्षकों में शामिल

0: शैलेन प्रताप सिंह का राष्ट्रीय सम्मान और सीधी के शिक्षकों का राज्य स्तरीय सम्मान जिले के लिए निश्चित रूप से गर्व और प्रेरणा का विषय है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं रीवा जिले की तरफ, जहां बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित की गई। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रही हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव।
2: बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित की गई। बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित किया गया। फसल सुरक्षा, कीट एवं रोग प्रबंधन, संतुलित पोषण तथा मौसम के अनुरूप कृषि कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिले में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की स्थिति को देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक एवं उपयुक्त फसलों का चयन, खेत प्रबंधन, फसल पुनर्स्थापना तथा आगामी फसल की तैयारी के संबंध में किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया गया। किसानों को एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की सलाह देते हुए समझाइश दी गई है कि एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ ही पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पुष्प उत्पादन, सब्जी उत्पादन एवं अनाज उत्पादन जैसी गतिविधियों को अपनाकर किसान अपनी आय के विभिन्न स्रोत विकसित कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव।
1: हमारी अगली खबर है शिवपुरी से, जहाँ गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम गाजर घास पर नियंत्रण, स्वस्थ पर्यावरण हमारा संकल्प रखी गई। इसके तहत गाजर घास मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
3: शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीते दिनों गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष अभियान की थीम गाजर घास पर नियंत्रण, स्वास्थ्य पर्यावरण और हमारा संकल्प रखी गई। इसके तहत गाजर घास मुक्त अभियान भी चला। जिले में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम नागरिकों को गाजर घास के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा गांव-गांव एवं विभिन्न स्थानों पर जाकर किसानों से संपर्क किया गया और गाजर घास नियंत्रण के उपाय बताए गए। इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम के भार्गव ने किसानों और ग्रामीणों को बताया कि गाजर घास एक अत्यंत हानिकारक खरपतवार है। इसके संपर्क में आने से एलर्जी, दमा, खांसी, त्वचा रोग और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। यह फसलों की उपज को घटाती है, मिट्टी की उर्वरता कम करती है और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं सतना जिले की तरफ, जहां जल जनित एवं संक्रामक रोगों के संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
4: सतना जिले में जल जनित और संक्रामक रोगों को संभावित फैलाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार एस ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में गठित समिति द्वारा जिले में हैजा, आंत्रशोथ, पैचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर सहित अन्य जल जनित संक्रामक रोगों की रोकथाम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पेयजल की शुद्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा मच्छर मक्खियों के नियंत्रण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अधिसूचित क्षेत्र के में बाजारों, उपहार ग्रहों, भोजनालयों, होटलों, दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य एवं पेय पदार्थों की विशेष जांच की जा रही है। बासी मिठाइयां, नमकीन, सड़े गले फल, सब्जियां, दूषित तथा अनुपूरक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध है। गंदगी वाले स्थानों में नियमित सफाई कराई जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ नालों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के पानी का उपयोग पेयजल के रूप में न करने तथा हैंडपंप एवं ट्यूबवेल के पानी का उपयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
1: अगली खबर है श्योपुर जिले से, जहां 2,922 करोड़ रुपए से स्वीकृत 188 किलोमीटर लंबे ग्वालियर श्योपुर ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट का काम लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष 2027 में जिले वासियों का ब्रॉड गेज का सपना साकार हो जाएगा। पेश है श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी पालोठिया की यह रिपोर्ट।
5: श्योपुर जिले को बहुत जल्दी ब्रॉड गेज का सपना साकार होने वाला है। मार्च 2020 में आए कोरोना के दौरान श्योपुर से ग्वालियर ट्रैक नैरो गेज को बंद कर दिया गया था। 188 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक पर 100 साल पहले कोयला और भाप से चलने वाली रेल के लिए बिछाई गई पटरियों को उखाड़ने का टेंडर किया गया था। कोरोना काल हो जाने के बाद पटरियों को उखाड़ने का काम जल्दी शुरू किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2010-11 में स्वीकृत हुए 188 किलोमीटर के ग्वालियर श्योपुर का ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट

0: लिए 2922 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। पिछले 6 सालों में ग्वालियर से श्योपुर तक का ब्रॉडगेज का काम लगभग 90% पूर्ण हो चुका है। जिले वासियों को आगामी वर्ष 2027 में ब्रॉडगेज का सपना साकार हो जाएगा। इसकी शुरुआत पिछले दिनों ग्वालियर से केलारस और केलारस से बीरपुर के लिए मेमो ट्रेन का संचालन किया गया था और आगामी दिनों में ये श्योपुर तक चलाई जाएगी। इसके बाद इस ट्रैक पर ब्रॉडगेज का सपना साकार शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार श्योपुर वासियों को काफी दिनों से है। साथ ही रेलवे द्वारा एक और प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। इसमें झांसी से सीपरी, सीपरी से श्योपुर, श्योपुर से सवाई माधोपुर रेल लाइन का सर्वे तीव्र गति से किया जा रहा है। आगामी दिनों में श्योपुर से देश के किसी भी जगह जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध रहेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार पालोटिया।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन।
1: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीति

0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी लोक गीतों का निर्धारित क्रम लोक रंग। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक आपकी फरमाइश। प्रसारण समय रात 10 और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे मुन्ने खां का सारंगी वादन राग वाचस्पति। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक संक्षिप्त सा परिचय कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:40 का समय होगा चिंतन का और कृषि चर्चा सुनी जा सकती है 6:45 पर। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर। कल हम आपको सुनवाएंगे

0: साधना गौरे, समीक्षा और स्वाति मिश्रा के गाए हुए कुछ भजन। शब्द सागर, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 9:30 बजे। इसमें कल सुनिएगा डॉक्टर निलंब त्रिपाठी और बिंदु त्रिपाठी का काव्य पाठ। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10 बजे। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। रागमाला, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में सुबह 8:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन राग तोड़ी और अहीर भैरव। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:30 बजे। इसमें कल किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दीनानाथ घोटे के साथ की गई भेंटवार्ता, मध्य प्रदेश की प्रमुख औषधीय फसलों की खेती। साथ ही सुनिएगा लघु वार्ता अमरूद में मधुमक्खी प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मुकुल कुमार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, आपकी फरमाइश। प्रसारण समय दिन में 12:00 बजे। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक जमुनिया की 28वीं कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1:00 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 1:45 पर सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे इंदौर केंद्र का योगदान होंगे। 2:00 बजे फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 2:30 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 बजे, रात 8:15 पर और रात 10:00 बजे। शाम 6:00 बजे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुर्खियों में। ये कार्यक्रम होगा रात 8:00 बजे। रात 9:30 बजे हम पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। इसमें कल आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम आबशार गजल और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा रात 10:30 बजे। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे कल्पना झोकरकर का ख्याल गायन राग गौड़ मल्हार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया ना किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को प्रतिस्पर्धी नहीं संवाद की कड़ी कहा। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियां जारी, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। उज्जैन में 17 सितंबर को 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश में उत्साह उमंग के साथ गणेश उत्सव आरंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय कलाकारों से खरीदी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं। और राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जोर, उज्जैन और नीमच सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल के फूल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाया करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी खो जाए तो पूरे कमल की सुंदरता कम हो जाया करती है। श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। गृहमंत्री ने आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और

0: पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का आयोजन प्रदेश के हरेक ग्राम एवं नगर स्तर पर अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साहपूर्वक किया जाए। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उज्जैन में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियंता दिवस के अवसर पर कल लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण की अवधारणा पर आयोजित समारोह में अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभियंताओं, अधिकारियों, संयुक्त दलों तथा समारोह में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, रानी दुर्गावती पर्यावरण हितेशी पुरस्कार और राजा भोज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व गणेश चतुर्थी के साथ आज से प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में स्थानीय कलाकारों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं खरीदी। उन्होंने प्रतिमा के लिए 3,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान भी किया। श्री खंडेलवाल ने स्थानीय कलाकारों से प्रतिमा खरीदने को उनकी कला और रोजगार को बढ़ावा देने का माध्यम बताया। वहीं श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाइयां दी।
3: सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा वो आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। लेकिन मैं जो दृश्य देश भर में देख रहा हूं वो अद्भुत है। जिन युवाओं के बारे में, किशोरों के, यहाँ तक के बच्चों के बारे में ये बात कही जाती है कि इस जमाने में सोशल मीडिया और रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनको हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों से बहुत लेना देना नहीं है, ये गलत है। आज देश भर की सड़कों पर मैं देख रहा हूँ युवा, नौजवान, किशोर, बच्चे कई दिनों से लगे हैं गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना के लिए, गणेश उत्सव बनाने के लिए।
1: इधर गणेश चतुर्थी पर आज प्रदेश में भी आस्था और उत्सव का अलग ही रंग दिखाई दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना और बड़ा गणपति मंदिर, मंदसौर के द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर और सतना रतलाम

टीकमगढ़, ग्वालियर तथा बैतूल तक के मंदिरों और गणेश पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। घरों और सार्वजनिक पंडालों में भी विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। कई स्थानों पर विशेष पूजन, अभिषेक और महाआरती के आयोजन हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित सिद्ध विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 5,51,000 मोदक का भोग लगाया गया। वहीं इंदौर के ही खजराना गणेश मंदिर में 7 करोड़ के आभूषण से श्री गणेश का श्रृंगार किया गया और 1,25,000 मोदक का उन्हें भोग लगाया गया। मंदसौर के गणपति चौक स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर में करीब 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विशेष आकर्षण बना हुआ है। गणेशोत्सव के दौरान यहां 12 दिनों तक विशेष पूजन, हवन और महाआरती के आयोजन होंगे। रतलाम में भी सुबह से ही गणेशोत्सव का उत्साह देखने को मिला है। ग्वालियर में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ देखने को मिली। इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की मांग यहां भी देखी गई। सतना के सिंधी कैंप स्थित मीरानी कॉलोनी में भी आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। यहां स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमा रविवार देर रात जबलपुर से यहां पहुंची। उधर जबलपुर जिले के बोलाई गांव के करीब 300 वर्ष पुराने सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। गणेश चतुर्थी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह सीहोर के गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के साथ 12 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ आयोजन की शुरुआत की गई। आज हरतालिका तीज पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। वहीं नव युवतियां भी अच्छे घर और अच्छे वर की कामना के लिए तीज पर्व मनाया करती हैं। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्से में सक्रिय हो गया है। कल इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं टीकमगढ़ में बांध के गेट खुलने पड़े। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में अवैध शराब की घटना से मुरैना में आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने नागरिकों से अवैध शराब की सूचना देने की अपील की है। झाबुआ जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 के उप निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रेक्षण के लिए सेवानिवृत्त IAS शेखर वर्मा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने खंडवा जिले के मूंदी स्थित 132 केवी सब स्टेशन में 50 MVA क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। उस बुलेटिन में अपनी अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम और आप सभी को हिंदी दिवस और गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो भैया, भाषा जो होती हैं वे अपने आप में अनूठो प्रेम स्नेह और एकता को बंधन लेके आती हैं। हर भाषा का अपना महत्व है, मिठास है और शब्दों की खूबसूरती है। लेकिन जब अगर हम अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो जब हम अपनी भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी बातें एक दूसरे से साझा करते हैं और अपने जो मन

के भाव हैं बताते हैं तो उनकी बात ही अलग होती है। और हिंदी भाषा को और प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसीलिए हर वर्ष अपन लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ये जो अगर अपन बात करें तो हर भाषा में अपन जब बात कर रहे थे तो अपने देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषाओं को सहयोग के तौर पे हिंदी भाषा ने सहयोग किया है। वहीं हिंदी भाषा की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे विभिन्न कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से हम सभी के लिए एक अनूठी मिसाल भी रखी है, हमारे साहित्य को और भी बेहतर बनाया है। देश विदेश और दुनिया भर में उनकी एक अपनी छवि बनी है। हिंदी अपने आप में बहुत ही समृद्ध भाषा है। कई इसके लेख आज भी हम सबके लाने उत्साह भरत हैं, नई सीख देते हैं। और तो और जब हमें कुछ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी होती है तो हिंदी भी हमें सबसे सरल और सहज माध्यम लगता है। इसीलिए हम सभी कहते हैं कि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। और आज तो भैया देखो गणेश चतुर्थी को भी त्यौहार है, और हमारे जो 30 त्यौहार होते हैं वे अपने आप में अनूठी एकता लेके आते हैं, हमारी एकता संस्कृति को दर्शाते हैं। आज तो हर घर घर में जो है गणेश चतुर्थी को जो है उत्सव सजो है, सभी भैया बहनों ने अपने घर में श्री गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करी हुई है। जगह जगह अपन ने देखो सुंदर सुंदर जो है पंडाल सजे हैं। श्री भगवान गणेश जो हैं उनके जन्म उत्सव को ही अपन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। और भगवान गणेश को जो कहो जाता है कि बुद्धि ज्ञान सुख समृद्धि और शुभता के देवता मानो जाते हैं। उन्हें विघ्नहर्ता लंबोदर मोदकधारी और विभिन्न नामों से पुकारते हैं, और उन्हें मानो जाता है कि वे अपने जीवन की जो बाधाएं हैं उनको दूर करते हैं। तो ऐसी ही कामना के साथ आज अपन अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बढ़त हैं लोकमादरी की तरफ, और पढ़त हैं पहली फरमाइश। यह फरमाइश आई है उटीला से, लिखवे वाले भैया बहन हैं शौकत अली, सीनू, नियाजी और राधा बेगम ने फरमाइश करी है कि हमें बाबूलाल कुशवाहा के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ भैया रो सुनते हैं।

भैया ना देखो, कहते हैं कि जब श्री गणेश की जी की मूर्ति घर घर विराजत है और कई स्थानों पर विराजत है, तो उनकी मूर्ति अपने आप में ही सुंदरता को प्रतीक होते हैं। सभी लोग मिलके विधि विधान के साथ उनकी पूजा पाठ कराते हैं। और भैया रो, अपन जानते ही हैं कि उन्हें मोदक को भोग जो है बहुत ही पसंद आते हैं, तो अपनी बहनें भी कई प्रकार के जो है मोदक बना के उनको अर्पित भी करती हैं। कई स्थानों पर इसके लाने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, भजन भी होते हैं, और ऐसा लगत है जैसे कि पूरा चारों तरफ जो है भक्ति एकता प्रेम के साथ मिलजुल कर सब यही संदेश दे रहे हों कि सभी के लाने जीवन में सुख आए समृद्धि आए। लेकिन भैया रो, जब अपन कोनो भी उत्साह बनावते हैं तो अपन को एक बात को विशेष ध्यान रखने आउत है कि उत्साह तो अपनी जगह अपने आप में अनूठी चीज़ है, लेकिन ऐसो अपन को कोनो भी कामकाज नहीं करने हैं जिससे अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। तो जहाँ तक हो सके तो अपन को जो है मिट्टी के गणेश जी की जो मूर्ति है एलिया से अपन लोग जो है स्थापित कर रहे हैं। और भैया, जब इनके विसर्जन को समय आउत है तो अपन को प्राकृतिक तरीके से ही इनको विसर्जन करो चाहिए, जिससे कि कोनो भी प्रकार को जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे और अपनो पर्यावरण सुरक्षित रहे। और अपन को सभी को यही प्रार्थना करने हैं कि सभी के जीवन में जो है ज्ञान आए, सुख आए, शांति आए और समृद्धि आए, तभी अपन जो है अपनी जो पूर्णता है पूर्ण होते हैं। और अपन को अगर आगे बढ़ने हैं तो ये कहलाने बहुत ज़रूरी होते हैं कि कोनो भी काम काज कर रहे हैं या कोनो भी अच्छी चीज़ है, तो अगर अपन को ज्ञान है तो अपन को अपने तक ही सीमित नहीं रखने हैं, अपने आगे अपने आसपास वाले लोगों को भी बताने हैं। अब जैसे कई प्रकार की देखो विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं अपन घरों से लगा होते हैं, या कोनो भी नई जानकारी अपने पास आउत है, या कोई भी प्रकार की कोई भी बात अपन को पता चला थे और वो जनहित में है, तो अपन को चाहिए कि अपन अपने आसपास रहने वालों लोगों को भी उसके बारे में बताएं और उनको ज्ञानवान बनाएं। साथ ही अगर हम मिल के सभी लोग कोनो भी प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता भी मिलता है। कई ऐसे उदाहरण अपन ने अपने गांव में देखे, देहातन में भी देखे हैं कि चाहे पंचायत के काम काज हो या कोनो भी साफ सफाई की हो या कोनो भी प्रकार की सुरक्षा की बात हो, जब अपन सब मिलके काम में जुट जाऊत हैं तो वह समस्या को सही समय पे समाधान भी हो जाऊत है, और विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनसे अपन को मिलके लड़ने की क्षमता भी मिलत है। और अब पढ़ते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है हठा दमोह से। लिखने वाले भैया बहन हैं शालिनी, अमृता, शिखा, अनुज और सचिन नेमदव। इन्होंने फरमाइश करी है कि हमें हरी राम पुरोहित के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ भैया बहनों, सुनते हैं।

भैया यारो देखो, कहते हैं कि प्रकृति सभी को सहेजत है, जीवन दान देत है और जीवन को आगे बढ़ावे में सहयोग करत है। और अपन सबकी जिम्मेदारी है कि अपन ऐसा कोनो भी कामकाज ना करें जिससे कि अपनी प्रकृति को नुकसान पहुँचे। चाहे हमारी आवश्यकताओं की बात करें, देखो कई समय से अपन ने देखो है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जो पेड़ पौधे हैं वे भी प्रभावित हुए हैं। और जहाँ पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं तो पूरी तरीके से जो है प्रकृति को संतुलन बिगड़ जाते हैं। अब जब पेड़ पौधे नहीं हुए हैं तो मिट्टी को कटाव बढ़े, वहीं पर जो मिट्टी की जल धारण क्षमता में सहयोग मिलत है तो वो भी प्रभावित हुई है। तो भैया जा समय अपन देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, और ऐसे में अपन जो वर्षा जल है उसका सही तरीके से भूमिगत करने की व्यवस्था करके चलें तो निश्चित तौर पे अपन बहुत सारे पानी को बचा भी सकते हैं। और यही पानी जो है अपन देखते हैं कई काम में भी आउट है। अपनी चाहे सिंचाई की बात करें, अगर खेत खाल जो खलियान हैं उनको हरो भरो रखने हैं तो ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो। तो जो पानी है जितना अधिक से अधिक भूमिगत होगा तो वह पानी हमारी भूमि के लिए बहुत ही उपजाऊ भी बनाता है। साथ ही अपन देखते हैं पानी के बिना तो जीवन की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पीने के लिए करें या रोज़मर्रा के काम काज के लिए करें, सभी में अपन को पानी की ज़रूरत होती है। तो जो पानी अपन उपयोग कर रहे हैं वह साफ़ हो, स्वच्छ हो, ये बात को भी ध्यान अपन को ही रखना है। क्योंकि अक्सर देखो जाता है कि बारिश के मौसम में जो है पानी में शुद्धता की कई बार कमी होते हैं, और ऐसा लगत है जिनके कि पानी में अगर कोई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं तो उससे को सीधा प्रभाव जो है अपने शरीर पे पड़ते हैं, अपन बीमार हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पेट से जो समस्याएं जुड़ी होती हैं वे भी आने लगती हैं। तो अपन को ध्यान रखने कि जो भी पानी अपन उपयोग में ला रहे हैं वह साफ़ हो, स्वच्छ हो और पीने योग्य हो, और अगर आवश्यकता पड़े तो अपन उसको साफ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन पानी को छान सकते हैं, और अगर लग रहे कि बहुत ज़्यादा कोनो प्रकार की अशुद्धि की संभावना है तो अपन पानी उबाल के भी पी सकते हैं। पानी को साफ करने के लाने जैसे कि बड़ी बड़ी टंकी होती हैं, अपन पानी को अगर सहेज के रख रहे हैं तो उनमें फिटकरी को भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं जो अपने आसपास कभी अपन देखते हैं ना कि बारिश के मौसम में कभी सर्दी सी लगन लगाते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो घर घर में जो है कूलर भी होते हैं। कई जगह ऐसे भी जगह होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठो भी हो सकते हैं, तो पानी इकट्ठे होने के कारण वहाँ पे मच्छर पनपे की भी संभावना होते हैं। तो अपन को ई मौसम में पानी को सही तरीके से निकाल के भी उनको उस जगह से रखने हैं जिससे कि अपन को मच्छरों से होने वाली बीमारियों से अपनों बचाव हो सके। और अब पढ़ते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है राजगढ़ मध्य प्रदेश से, लिखने वाले भैया बहन हैं सुनील आशीष महेंद्र प्रजापति। इन्होंने लिखो है कि अपन नियमित रूप से जो है कार्यक्रम सुनत हैं और इन्हें लोकगीत बहुत ही अच्छे लगत हैं। कार्यक्रम में जो लोकगीत सुनाए जाते हैं, कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती है, वह इन्हें बहुत ही नौनी लगत है। और साथ ही फरमाइश करी है कि बादाम सिंह के स्वर में हमें लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

भैया जब बरसात होत है तो बाई के संगे संगे कहे जात है कि प्रकृति को जो है नए जीवन की शुरुआत होत है। और ये बात बिल्कुल साची है कि एक यही मौसम होत है जबकि जो पेड़ पौधे हैं स्वतः ही पनपन लगत हैं। कहीं भी कोई भी अगर बीज दबा होता है तो वो एक छोटे से नन्हे से अंकुर से फूट कर एक छोटा सा पौधा बन जाता है। कई जगह अपन देखते हैं कि अपने घर के आसपास भी जहाँ पे कहीं कभी कोई बीज गिर जाता है तो छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। जैसे कि आम की अगर कहीं गुठली पड़ी है तो आम का पौधा निकल आया, तो कहीं नीम का निकल आया, कहीं पीपल का, तो कहीं विभिन्न प्रकार के और भी पौधे। लेकिन वे पूरी तरह बढ़ नहीं पाते क्योंकि वो जगह उनके लिए उतनी सीमित नहीं होती जहाँ पे वो अच्छी तरह बढ़ सकें। तो अगर अपन चाहें और अपन अपने आसपास देखें कि ऐसे छोटे छोटे पौधे नन्हे निकल आए हैं, तो कोई ऐसी जगह चाहें तो अपनी खेत की मेड़ हो या अपने गांव के बाहर कोई कच्ची ज़मीन हो या ऐसी जगह जहाँ पे इनको लगा कर ये इन्हें पेड़ बनने का पूरा अवसर मिल जाए, तो हमें उन पौधों को वहाँ से लेकर उन्हें दूसरी जगह स्थापित ज़रूर करना चाहिए। और भैया अगर हम इस तरीके से किसी पौधे को स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना कि छोटे जो पौधे होते हैं, जैसे हमें अपने बच्चों की देखरेख करनी होती है, उनको समय पे खाद पानी की सबकी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से शुरुआत में पौधों को भी ज़रूरत होती है। और अपने किसान भैया ने भी तो देखो अपने खेतों की जो है देखभाल भी तो करते हैं, तो अपन को चाहिए कि जब अपन कहीं छोटों सो पौधा लगा रहे हैं तो बाई के चारों तरफ जो है बाड़ी ज़रूर बना दें जिससे कि कोई भी जानवर उनको नुकसान ना पहुँचाए और वे पौधे अच्छी तरीके से बढ़ पाए। क्योंकि अगर एक पौधा भी अपन अच्छे से बढ़ने में मदद कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपना प्रकृति की तरफ योगदान भी दे सकते हैं। और भैया कहो भी जात है कि नन्हा पौधा बनता पेड़ सुख संपदा देता अनेक। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब एक पौधा पेड़ बन जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देता है। विभिन्न प्रकार के हमें पौधों से जो है फल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, ठंडी ठंडी छाँव मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और हमारे जो पर्यावरण है उसको भी संतुलित रखता है। कभी मान लो बहुत गर्मी हो रही हो और अपन को कहीं अच्छे से पेड़ की छाँव मिल जाती है तो कितना आनंद मिलत है। और इसके साथ साथ जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी पेड़ पौधे जो है आश्रय देते हैं। और वर्षा का जो मौसम होता है भैया, कहते हैं कि पेड़ पौधों को रोपित करने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। तो आप भी अपनी तरफ से भी जो है कई प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनको लगा सकते हैं। और भैया बहुत से भैया बहनों ने तो अपनी मेड़ों पर विभिन्न प्रकार के पौधे लगा करके दोहरा लाभ भी लिया है। उनको जहाँ एक तरफ खेती से फसल भी मिलती है तो वहीं विभिन्न प्रकार के अगर वो पौधे लगा देते हैं जो सीजन के अनुसार फल देते हैं तो उनसे भी उनको लाभ मिलता है। अब जैसे मान लो किसी ने अपनी मेड़ पे नींबू का पौधा लगा रखा है या आंवला का पौधा लगा रखा है या आम का पौधा लगा रखा है, नीम का लगा रखा है, तो ये सब पौधे भी विभिन्न प्रकार के चीज़ें हमें देते हैं, साथ ही कई औषधीय गुणों से भी भरे होते हैं। बाज़ारों में इनकी मांग भी बढ़ती है, विभिन्न तरह से इनका उपयोग भी होता है। तो हम इनसे मिलने वाले जो फल हैं, छाल है, पत्तियाँ हैं, उनका उपयोग करके भी अपन लाभ ले सकते हैं। तो अपन तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाएं। और अब लेते हैं अगली फरमाइश। यह फरमाइश आई है अशोक नगर से, लिखने वाले भैया बहन हैं राजू, नीता, मनीषा और सोहन भैया। इनने फरमाइश करी है कि हमें काशीराम झा के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आओ सुनते हैं।

भैरों देखो, लोग भी सुनत सुनत अपन और उनको भी मन होत हुई है कि अपन भी अपनी फरमाइश भेजें ताकि हमारी भी फरमाइश दीदी हरें सुनवाएं। तो देखो, फरमाइश भेज के लाने आपको जो है हमारा जो नंबर है वह ज़रूर आपके पास पहुँचाइए, और वही नंबर पे आप व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। तो भैया रो नंबर लिख ले, नंबर है 9425702768। एक बार फिर से अपन नंबर बताओ थे, 9425702768। तो ई नंबर पे अपनी फरमाइश भेज करके आप भी और जो है अपनी पसंद के लोकगीत सुन सकते हैं। और अब लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश आई है सागर से। लिखवी वाले भैया बहन है सुखदेव, देवेंद्र और राजीव देशमुख। तो इन्होंने फरमाइश करी है कि हमें रजनी अजरिया के स्वर में लोकगीत सुनवाएं। तो आप सुनते हैं।

भैयरों, अब हो रही है चलबे की बेरा। सभी किसान भैयरों को स्वाति बहन की राम राम। जय जवान, जय किसान।

0: Surgiome. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। यह सम्मेलन कई अर्थों में अभूतपूर्व रहा। सफलताओं के पैमाने पर यदि देखा जाए तो बिना किसी विवाद के घोषणा पत्र का, शब्दावलियों का चयन और जिन विषय वस्तुओं को उठाया गया, वह आने वाले दिनों में विश्व राजनीति में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। प्रभु दयाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि कूटनीतिक दृष्टि से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या सब रही, और विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए एक आयोजनकर्ता के रूप में यह कितना संतोषप्रद रहा।
2: देखिए, मेरे विचार में नई दिल्ली में संपन्न हुआ जो ये 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था
1: जी,
2: इसमें जो यूनैनिमिटी से डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ, वो डिप्लोमेटिक स्फीयर में वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और राजनीतिक इन्फ्लुएंस का एक ऐतिहासिक अध्याय साबित हुआ है। घोर में ये देखिए, भू राजनीतिक ध्रुवीकरण, पश्चिम एशिया में युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के साय के बावजूद, इतनी सब डिफिकल्टीज के बावजूद, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परिचय देते हुए न केवल सम्मेलन को सफल बनाया, बल्कि अपनी अध्यक्षता में एक साझा सर्वसम्मति भी स्थापित की। देखिए, ये एक

0: कंसेंसस बनाना ऐसे मीटिंग में जहां तरह तरह के डेलीगेशन है जिनमें आपस में मन मुटाव है, ये यूनानिमिटीज बनाना कंसेंसस से ये डिक्लेरेशन पास कराना बहुत बड़ी बात है। और एक आयोजक के रूप में भारत को इसको काफी संतोष देते हैं, वो ये है कि जैसे बहुत से अलग अलग जब मैंने बताया उनके कॉम्बैटेंट्स के बीच में मध्यस्थता करना। अब देखिए ईरान और यूएई के बीच में बहुत टकराव है लेकिन उनमें मीटिंग कराए, वैश्विक वित्तीय और प्रशासनिक सुधार कराना जिसके बारे में बहुत बातचीत हुई, ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, ये सब जो है भारत की बड़ी अचीवमेंट्स है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ देशों की ये कोशिश रहती है कि ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी बनाओ, एंटी अमेरिका ब्लॉक। तो भारत ने ये पूरी तरह से दिखाया कि हम इसको एंटी अमेरिका फ्रंट नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसको ग्लोबल साउथ के विकास यानी जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर, इन सब के क्षेत्रों में एक कोऑपरेशन का मंच के रूप में बनाए रखना चाहते हैं।
1: प्रभु दयाल जी, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि परस्पर विरोधी दिखते हुए लोग, वेशभूषा, भाषा, खान पान सब कुछ अलग होते हुए भी भारत अपने आप में एक है, वही आपने अपने शब्दों का चयन करते हुए कहा कि जो यूनिटी यहाँ से निकल के आई है, परस्पर विरोधी दिखने वाले ही नहीं वास्तव में विरोध रखने वाले पक्ष एक मंच पर एक साथ एक घोषणा पत्र पर, एक एक शब्द के लिए लंबी चर्चा हो जाती है और उस शब्द को बदला जाए उस पर विरोधाभास दिखता रहता है, इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे कौन सी रणनीति रही? यदि इसे आपने कहा कि बड़ा ही अद्भुत स्ट्रेटेजिक रुख रखते हुए वो कायम किया गया, यहाँ थोड़ा सा इसे स्पष्ट करें कि कैसे ये शब्दावली एक बनी रही, सबकी सहमति रही, कुछ भी हटाना घटाना जोड़ना नहीं पड़ा।
0: इसमें हमारे डिप्लोमेट्स की बहुत कड़ी मेहनत साफ दिखती है। ये जो कंसेंसस बना है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दो दिन में बन गया जब ये ब्रिक्स सम्मेलन 12-13 को हुआ, नहीं। इसमें बहुत पहले से काम चलाया जा रहा है और लगभग 350 मीटिंग्स की गई जो भारत के डेलीगेशन ने दूसरे डेलीगेशंस के साथ करी, और इसकी वजह से ये कंसेंसस बना हर पैराग्राफ पे। देखिए ये कोई एक दो पैराग्राफ का डिक्लेरेशन नहीं है, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन
1: जी।
0: तो इसमें ये जो कड़ी मेहनत हमारे डिप्लोमैट्स ने की है उससे ये कंसेंसस बना है, और मेरे विचार में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कई चीजें हैं जो अहमियत रखते हैं, एक तो जैसे ब्रिजिंग डिवाइड, जो विरोधाभास के पोजिशन उनके बीच में सर्वसम्मति का मॉडल बनाया, जैसे मिडल ईस्ट में ईरान और यूएई जिसका हमने जिक्र किया था उसके भी बड़े गहरे मतभेद थे, इसके बावजूद भारत की मध्यस्थता ने इनको साथ बिठाया और इनमें बातचीत कराई। इसके अलावा देखिए ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देना, जैसे यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की बात या आईएमएफ में रिफॉर्म्स करने की बात है या वर्ल्ड बैंक में करने की, ये सब ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। भारत जो बार बार कहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा कि ये ग्लोबल जो है सिचुएशन, इसको एक पिरामिड ऑफ प्रिविलेज से बदलकर एक प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप को हमको उसको बनाना है।
1: यहाँ पर यदि हम प्रधानमंत्री के विशेष रूप से सम्मेलन के साथ साथ जो विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत की उनकी तरफ आपको ले चलना चाहें और श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहें, क्या सब बातें हुई ब्रिक्स के साथ साथ? प्रधानमंत्री ने दुनिया के कह लें कि सबसे शक्तिशाली देशों में से एक चीन और रूस दोनों यहाँ साथ हैं, दोनों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ भी चर्चा हुई है, कुल क्या नतीजा निकल कर आता दिख रहा आपको विविध देशों के साथ बातचीत के साथ?
0: जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेशन थे उनके लीडर्स से जो बातचीत की, वो भारत की सक्रिय, संतुलित और बहुयामी यानी मल्टीलेटरल और मल्टी अलाइंड पॉलिसी, वो उसका प्रमाण। जैसे फॉर एग्जांपल रूस, चीन, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका, ये सब ऐसे देश हैं जो दुनिया में बहुत महत्व रखते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी बहुत अहमियत है, और उनके डेलीगेशंस के साथ बैठकर जैसे व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस

0: एनर्जी, हायर टेक्नोलॉजी, इन सब पे बात हुई, ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ देखिए, ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी की हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ये जो सब वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात की और जैसे विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज गया है जिससे भारत वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े प्रोपोनेंट के रूप में उभरा है। और मेरे विचार में देखिए, ये सप्लाई चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो गई है लड़ाई झगड़े की वजह से।
1: जी
0: जो मिडल ईस्ट में लड़ाई हो रही है उससे एनर्जी सप्लाईज, फर्टिलाइजर सप्लाईज और ट्रेड इफेक्ट हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर से जो फूड सप्लाईज, बिकॉज यूक्रेन एक बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर है, उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया बार बार कि ये सप्लाई चेन्स को बनाए रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है इन सप्लाई चेन्स के बंद हो जाने से। साथ ही साथ देखिए, जैसे व्यापार के निवेश में तेजी पर जोर दिया गया, जैसे यूएई के साथ और कुछ बड़े पार्टनर्स के साथ जो हमने बातचीत की, वो ऊर्जा और एक तरह से बुनियादी ढांचा से संबंधित जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट है, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट्स इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के और देश, इन सब के साथ जो ये बातचीत हुई द्विपक्षीय, इसमें जो रक्षा और डिजिटल इश्यूज पे, कोऑपरेशन पे जो बात है, इसके ढांचे के नए द्वार खुल रहे हैं।
1: प्रभुदयाल जी, हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। व्यापार आपसी बढ़ाने के साथ साथ सदस्य देशों के बीच कारोबार बढ़ाने की वकालत करते हुए कुछ देशों की ओर से आवाज उठी कि अपनी करेंसी में क्यों ना हम कारोबार करें। इसका क्या भविष्य आगे आपको दिख रहा है ब्रिक्स के इस सम्मेलन से?
0: ब्रिक्स में मुद्दत से एक आवाज उठाई जा रही है कि एक ब्रिक्स करेंसी होनी चाहिए।
1: जी
0: भारत उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत चाहता है कि जो ये कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, ये अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करें,
1: जी
0: वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम रशिया के साथ मुद्दत से रुपी रूबल ट्रेड को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे सब कंट्रीज के साथ जैसे यूएई के साथ भी काफी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला है। तो अगर ये लोकल करेंसी में ट्रेडिंग बढ़ती है तो इससे डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, और जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनका बड़ा फायदा होगा। तो न सिर्फ भारत ने बट कई देशों ने इस बात पर जोर दिया कि ये लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।
1: बैठक के दौरान परस्पर विरोधी दृष्टि रखने वाले, जिनका अतीत में कह लें कि सिर्फ निजी हित रहा, वहीं प्रधानमंत्री ने कई अवसर पर कहा कि हमें अपनी क्षमताओं को हथियार नहीं बनाना चाहिए। विशेष रूप से यदि हम मिनरल्स को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहें, संकेत से थोड़ा आगे निकलते हुए, तो इस तरह के विचारों का कैसा स्वागत होता अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, विश्व राजनय पर असर होता दिख रहा आपको?
0: असली बात यह है कि चाइना का कंट्रोल है क्रिटिकल
1: जी जी
0: मिनरल्स पे, और चाइना ने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जिससे क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हुआ। तो भारत ने जो ये आवाज उठाई कि भाई ये क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए, बात ऐसी है जिससे कई देशों तक गूंज गई और उन्होंने समर्थन किया क्योंकि उन सबका नुकसान हो रहा है। तो मेरे विचार में ये कहना बहुत जरूरी था।
1: यहाँ पर वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात प्रधानमंत्री बार बार करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने दोहराया है। अन्य देशों के प्रतिनिधियों की ओर से इस मसले को लेकर क्या विचार आए?
0: ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
1: जी
0: इन सब में सुधार करना बहुत आवश्यक है। अब सबसे ज्यादा तो जरूरी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेफर।
1: जी
0: अब यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना है वो 1945 में की गई थी, तब से तो दुनिया बदल गई, कितने डेकेड्स गुजर गए, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी। अच्छा, अब जो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, और उस वीटो पावर से क्या होता है कि उनके जो व्यूज हैं उसके खिलाफ कोई प्रपोजल हो उसको वीटो कर देते हैं, तो नेचुरली इससे तो ग्लोबल सिस्टम का बड़ा नुकसान होता है। तो भारत बार बार ये कहता आ रहा है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन के टर्म्स में है कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल।

0: बताएं कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य स्वर और संदेश क्या है, तो वह अपनी ओर से आप क्या आकलन करते हुए कहना चाहेंगे?
1: मेरे विचार में सबसे बड़ा सिग्नल जो गया है
0: जी,
1: वो ये कि भारत का महत्व अब बहुत बढ़ता जा रहा है ग्लोबल स्फीयर में, और इसी वजह से ऐसा एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हो सकती है भारत में जिसमें अनेक देश शरीक हुए, वो उनमें भी एक यूनानिमिटी और कंसेंसस भारत बनाने में सक्षम रहा है। ग्लोबल साउथ का सपोर्ट करने वाला भारत सबसे आगे खड़ा हुआ देश है।
0: भारत की जो प्राचीन नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, और भारत की जो नीति रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः कि उसी सोच के साथ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, कह रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ प्रभुदयाल जी। श्रोताओं की ओर से प्रभुदयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उपयोगी और अच्छी जानकारियां आपने दी हैं,
1: बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। बात हमारी अपनी भाषा की, हमारी प्यारी भाषा को प्यार से दुलारने का आज दिन है, और आज हम अपने इस कार्यक्रम में भी बात करेंगे हिंदी की, गीत सुनेंगे हिंदी के।

अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे नैन अधर कटि नृत्य दिखावे।

श्रोताओं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद देश के कई हिस्सों को एकजुट करने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जो सर्वाधिक बोली जाती है और जिसे सीखना और समझना दोनों ही आसान हो, और इस भाषा के रूप में सामने आई हिंदी। सच तो ये है कि संस्कृत और हिंदी ये दो भाषा रूपी स्तंभ हैं जो हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत

श्रोताओं, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जो हमारे देश की विशेषता है, उसकी सुंदरता है। लेकिन शासकीय कामकाज के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, यानी शासकीय कार्यों के लिए हिंदी आधिकारिक भाषा हुई। इस तरह हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी। आप जान ही चुके हैं, राजभाषा यानी शासकीय कामकाज जिस भाषा में किए जाएं, जिस भाषा को ये आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो। और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा यानी उस देश की जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी। तो प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम कामकाज भी जो करें शासकीय, वो हिंदी में करें, और जीवन में जब हम बातचीत करें तो हिंदी का भरपूर प्रयोग करें।

श्रोताओं, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम अपने उस संकल्प को याद करें कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी

न सिर्फ शासकीय बल्कि सामाजिक स्तर पर भी पूरी तरह स्वीकार हो, पूरी तरह हिंदी का उपयोग किया जाए। आवश्यक है कि सभी प्रांतीय भाषाओं के सम्मान और विकास के साथ साथ हिंदी और प्रांतीय भाषाओं के बीच एक सेतु बनाया जाए और अपनी भाषा के बलबूते ही हम विश्व स्तर पर खड़े हों। लेकिन आज हिंदी के प्रति हमारे भीतर ही एक अवमानना की स्थिति नज़र आती है, क्योंकि हमारी जो मानसिक गुलामी है वो हमें हीन भावना से भर देती है। इस सोच से बाहर आकर हमें हिंदी को सही मान सम्मान देना होगा। विदेशी भाषाएं हम सीखें, उसमें प्रवीण हों, ज्ञान अर्जन की दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरी भाषा को ज्ञान के स्तर पर सीखना और उसे अपने जीवन व्यवहार में उतार लेना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसका हम ध्यान रखें कि दूसरी भाषाएं हम ज्ञान अर्जन के लिए सीखें, लेकिन हिंदी को जीवन में उतारें।

श्रोताओं, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अगर आपको अपनी भाषा आती है, अपने देश की भाषा आती है और हिसाब किताब करना आता है, ये दो बातें अगर आप जानते हैं तो आप इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी नया सीख सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ज़रा सोच कर देखिए कि भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बिना भाषा के न तो हम बात कर सकते हैं, न ही व्यापार कर सकते हैं। हमारी भाषा हमारे लिए एक संजीवनी जैसी है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में खुशियों के रंग भरते रहते हैं। हमारी भाषा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो अपने माध्यम से

न जाने कितना ज्ञान, कितना दर्शन, कितनी ही कलाएं आने वाली पीढ़ियों को सौंपती रही है। इसलिए हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए। ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम इस गौरवशाली परंपरा को, अपनी भाषा को, अपनी हिंदी को, उसके पूरे वैभव के साथ अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसे सौंपें। जी हाँ श्रोताओं, याद रखिए कि भाषा संस्कृति की आत्मा होती है। और सबसे विशेष बात यह है कि कोई भी भाषा जीवित तब होती है जब वो लोगों की ज़ुबान पर हो। उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो प्रयोग में आती रहे, यानी वो भाषा लिखी जाए और बोली जाए। तो प्रयास कीजिए कि आप भी अपने जीवन में, दैनिक दिनचर्या में हिंदी का भरपूर प्रयोग करेंगे और हिंदी में लिखेंगे।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हिंदी दिवस पर हमने बात की, अपनी राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी का एक सम्मान करने का प्रयास किया और कोशिश की कि गीत वही आपको हम सुनवाएं जिनमें अधिकाधिक शुद्ध हिंदी के शब्द हों, क्योंकि भाषा हमारी बड़ी लचीली है। बहुत से जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके शब्दों को हिंदी ने आत्मसात किया है, लेकिन विशुद्ध हिंदी का एक अपना सौंदर्य है। तो यही प्रयास था हमारा कि जो गीत हैं वो अधिकतम हिंदी शब्दों के साथ हों। उम्मीद है आज के गीत आपको पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के

0: को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।
5: द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today.

0: कानेर में कांग्रेस ने वाजिया अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आजाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK की इंसानी हकूक काउंसिल ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनूती जिलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तश्वीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकिरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है, नीज अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो सकता है। काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकाम और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बामानी और नतीजा खैज मुजाकिरात शुरू करें, सब्र तहमुल का मुजाहरा करें और पुरमन व जमहूरी हल तलाश करें। हुकूमत ने कहा है कि फौज की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। 2025-26 की अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि फौज की इन कोशिशों की वजह से तशद्दुद और मुजाहिरों में कमी आई है और पथराव का खात्मा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला यह त्यौहार दानाई, खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर 10 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में नसब करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से आलूदगी कम करते हुए रिवायती अंदाज में गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। जनाब फडणवीस मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में भगवान गणेश की मूर्ति नसब करने और उसकी पूजा करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगु कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। तफसील हमारे मुंबई के नामानिगार से।
1: महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। अकीदतमंद भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं और भक्ति गीतों के साथ उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। पुलिस, रेलवे और बेस्ट की जानिब से भीड़ और ट्रैफिक को मुनज्जम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में घरों और अवामी मकामात पर हजारों गणेश मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान सेहत कैंप, खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और सकाफती तकरीबात के साथ साथ फलाह व बहबूद के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने पूरी गुजरात रियासत में आज मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। रियासत के 250 तालुकों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र के चंद जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गुजरात में आज शदीद बारिश हुई। भावनगर के वल्लभपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं आनंद जिले के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान गुजरात में बारिश के पूरे मौसम के दौरान होने वाली बारिश की 80% बरसात हुई है। बारिश की वजह से रियासत के 35 डैम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब लंबे वक्फे के बाद इस बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमेरिका में मुकीम तजिया कार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पनबिजली पैदा कर

0: करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं, सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 07 1 1 7 2 3 7 1 7 1 0 6 और 2 3 3 1 4 4 4 4, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर ये कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है, और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम तीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि माँ को भी, वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है। तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज।
0: जी, और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी। जी वाजपेयी,
3: मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने

0: में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं।
1: जी डॉक्टर बिष्ट नमस्कार और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी आपने तो बहुत सही बात कर ली और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है। जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं उन सब पे आपने सही बात की। ये बहुत बहुत गलत बात है। जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है।
2: जी तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट टू डिकेड्स। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी। तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है। और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है। तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम आपके ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है। जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है।
2: जी ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिम्युलेशन जिसे कहा जाता है ये है क्या।
1: थैंक यू। एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है, दूध की मात्रा कम नहीं करनी है। जो पहले 6 महीने आपने केवल स्तनपान किया था उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में पौना कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत ज़रूरी बात है, कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे या इसको रख दो, तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और वो बच्चे के जो समय है जब उसकी भूख है उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है, और अर्ली स्टिमुलेशन

0: में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते
1: जी
0: खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था वो हुआ था, आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ, तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियाँ सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे की बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब उनमें, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वज़न जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वज़न बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
2: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार
1: शुक्रिया
2: जी।
1: जी, नमस्कार।
2: मैं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को अक्सर, इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज़ आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविज़न। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हो। डॉक्टर बिष्ट
0: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने, बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं, और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है, जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 साल 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं करेगा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। तो धर्मवीर जी बताइए, क्या है आपका प्रश्न?
3: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध दही पनीर और मक्खन घी, ये अब कुछ कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं, पनीर नकली, खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से।

0: तो फिर इसको वापिस करा। तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं? तो जहर पे जहर, नीम कितना करेला, नीम साला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं।
1: जी
0: कितना
1: रघुवीर
0: बच्चे,
1: जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है, हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से ये समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
2: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है। तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए। कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, पर फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी। और बाकी जैसा मुनीष जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का
1: बेशक,
2: कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी क्या सवाल है आपका?
3: जितने भी विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके। जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? जैसे हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम भाग के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो वो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और ख़ास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
4: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए। तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगड़ माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको जो संरक्षण देना है और जो सांप देना है बच्चे का, वो तो है ही। तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको, 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं, उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं। कई बार हम उन्हें छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशअप खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं। दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गांव में करते थे, रस्सा कसी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे। दीज आर गेम्स विच यू कैन डू, एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करना है। आप घर पे बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए, ये सब करना, दैट इज ऑल। आँख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आँख मिचोली थी वो बहुत अच्छा खेल था क्योंकि उसमें बच्चों को अंधेरे में भी आँख बंद करके भी चलने का, छूने का स्टिमुलेशन मिलता था।
1: जी डॉक्टर साहब, और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से राकेश जी। जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
5: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से। तो मैं हमारे जो हैं

0: माता पिता ले जाए और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक।
1: जी जी जी जी जी, आइए आपने एक अच्छे उदाहरण दिए। और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइन्स खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले ज़रूर ये शून्य और फिर नंबर 2331 0481, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044। तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए। हालांकि आहार तो मैं समझता हूँ डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही आहार यदि कहें, लेकिन शायद पूरक आहार के विषय में
2: तो वो 6 महीने के बाद ही देना चाहिए।
1: जी जी जी, तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार भी जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं।
3: मुनिषे का इस पे अन्नप्राशन और
1: जी
3: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था परंपरा थी, तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देते था, उसके लिए अन्नप्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
1: अन्नप्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
3: फेस्टिवल,
1: हमारी संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार है, तो उसी तरह अन्नप्राशन सबसे पहला।
2: और एक इसमें बात और है कि अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद खिलाना भी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हर्षवर्धन जी ने बात की कि कई बार चटाना इज नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है माँ के दूध के साथ।
1: जी जी जी। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं, और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज कुछ अलग था इस सवाल को लेकर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविज़न का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
3: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है, और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज़ से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ जाए, जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहे, तो इस तरह के एक डेज्ड और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है, ना उसे खाने का टेस्ट टेक्सचर पता चल रहा है, और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता, तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना, उनको फूड फैडिज्म भी ज़्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं वो ज़्यादा होती हैं।
1: तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो चूँकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित

0: तो यूनिसेफ ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
1: तो दो चीजें हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने दो महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है, लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। और एक एरिया है, क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे का काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सीवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
0: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
2: जैसा मनीष जी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके मानस, क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है, 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है, और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शन भी तभी बढ़ने होते हैं
0: जी। यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इस ईमेल पर भेज सकते हैं, पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है, आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। दिन भर की आपाधापी अब धीरे धीरे अपने पैर समेट रही है और रात की खामोशी में दिल की आवाज कुछ और साफ सुनाई देने लगती है। ऐसे में अगर हम गीत सुने तो वो गीत सिर्फ गीत नहीं रहते हैं, वो कभी बीती हुई याद बन जाते हैं, कभी किसी अपने की आवाज़ बन जाते हैं और कभी मन के उस कोने का पता हमें देते हैं जहां हम दिन भर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज की इस सुकून भरी रात में आइए खोलते हैं यादों की वो खिड़की जहां से संगीत भीतर उतरता है इन सारे एहसासों को समेटे हुए। आपकी पसंद, आपके एहसास और आपकी फरमाइशों के साथ, आपकी फरमाइश में सुरों की ये खूबसूरत महफिल अब करते हैं आपके नाम। और हमें मालूम है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि जो पहला गीत है वो हमने किस फिल्म से चुना है और किन दोस्तों की फरमाइश पर चुना है। ज़्यादा इंतज़ार तो इसी बात का होता है कि किन दोस्तों की फरमाइश है। तो चलिए, इंतज़ार नहीं करवाते, आपको बताते हैं कि ये जो गीत है वो हमारे किन दोस्तों की पसंद पर है। ये पहला ख़त मेरे हाथ में है, भिलाई नगर से आया हुआ। लिखने वाले श्रोता हैं प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री, अशोक, दीपक और आसमा श्याम कुंवर। और ये ख़त है छत्रपति संभाजी नगर से। लिखने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। और इसी गीत को पसंद करते हैं डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिए, राधिका गजभिए, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिए। तो आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत हमने चुना है हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। फिल्म का नाम है आँखियों के झरोखों से। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। उसकी आवाज आ रही थी दिल के पास, देर तक कुछ ख्वाब गुफ्तगू करते रहे।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं शर्मीली फिल्म का गीत। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। इस गीत को लिखा है नीरज ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। अनुरोध आप सबका है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस और एकांश गम्हाणकर। और बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, श्वेता सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर परी। और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता और टुक टुक। ये चिट्ठी आई है शेरकोट ज़िला बिजनौर से। लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। एक ख्वाब, एक रोशनी, एक महक, एक रागिनी, एक तेरे होने के कितने नाम हैं मेरी दुनिया में।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। मानोरा महाराष्ट्र से ध्रुव कुमार, गिरी, ज्योति, तेजस, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी। ये खत आया है कालका से शुभचंद्र बजाज, महेश बजाज और बिट्टा बजाज का। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। और बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मुहद से इसी गीत को पसंद करते हैं मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज़, रोज़मीन, तैमूर, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ।

0: आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत था। इसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज़ें आप पहचान ही चुके थे, किशोर कुमार और आशा भोसले की, और फिल्म थी बंदिश। श्रोताओं, आपकी फरमाइश का अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद आपको सुनवाते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। आइए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं। कभी कभी फिल्म का नाम है। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है खय्याम ने, और आवाज़ें लता मंगेशकर और

मुकेश की हैं। अनुरोध आप सबका है, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, गोला बाजार बक्सर से इसी गीत को पसंद करते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक, पटेल नगर मलोड पंजाब से ये खत आया है, रमेश कुमार जाजूरिया, रानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया, बेबी आरजू जाजूरिया और गीता रानी जाजूरिया का, और ये खत है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत। ये जो सांसों का सिलसिला है ना तुमसे, तुम ही इस जिंदगी के तमाम हासिल हो।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग वाचस्पति। तबले पर संगत की है मनोज पाटीदार ने।

0: राग रजनी। अभी आप शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना मुन्ने खां का सारंगी पर बजाया राग वाचस्पति। तबले पर संगत की थी मनोज पाटीदार ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं समाचार। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
5: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
4: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended